सुप्रभात। मेडीवेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन

2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सोच कर बोले वरना बोल कर कहीं सोचना न पड़ जाए। जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके खानदान का, आपके संस्कारों का पता चलता है। एक शिष्ट व्यक्ति की भाषा नम्र, संयत और समझदारी पूर्ण होती है। अपनी सारी बातों को मीठी जुबान में बोलना हर शख्स के बस की बात नहीं होती है। कुछ गिने चुने लोग ही मिलेंगे जो अपनी हर बात मीठी जुबान में कहते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है मीठी जुबान बोलने की। इसी प्रकार कुछ लोग कड़वी जुबान बोलने के आदि होते हैं। वे अच्छी बातों को भी इस लहजे में बोलते हैं कि एक आम आदमी को भी नागवार गुजरे। मीठी जुबान बोलने वालों को कभी कभी ढोंगी और चापलूस समझा जा सकता है, लेकिन अपनी बोली की वजह से उन्हें जीवन में अधिक क्षति नहीं उठानी पड़ती। कड़वी जुबान अपने आप में एक बुरी बला है। जिन लोगों को कड़वे लहजे में बात करने की आदत होती है, उन्हें अपनी बोली की वजह से हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार नियत साफ पर भी बदनीयति का आरोप लग जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बेवजह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को लोग हमेशा शक की निगाह से देखते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति उम्र बीतते बीतते परिवार और समाज से अलग थलग और अकेला पड़ जाता है। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रिश्ते बिगड़ चुके होते हैं। ऐसे लोगों को आत्ममंथन की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उसी वक्त कारण का पता लगा लेना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी सी बात जीवन में बड़ी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सोच समझ कर बोलना एक

अच्छी आदत है। ये मुंह से निकले हुए शब्द ही होते हैं। सोच समझकर बोलना एक अच्छी आदत है। ये मुंह से निकले हुए शब्द ही होते हैं जो आपके दोस्त या दुश्मन पैदा करते हैं। मुंह खोलने से पहले एक बार विचार कर लेना हमें बहुत सारी मुश्किल समस्याओं से बचा सकता है। दुश्मनों की संख्या बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं। हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे दोस्तों की संख्या में कभी कमी नहीं होगी। मीठी बोली बोलने वालों से कोई अपशब्द बोल भी देता है तो उसकी मीठी बातों से उसे अपने कही बातों का अफसोस होता है। मीठी बोली बोलने वाले अपनी बातों से कई प्रकार के काम भी सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। अतः हमेशा सही शब्दों के साथ मीठी बोली बोलनी चाहिए।

मीठी वाणी, वाणी का महत्व, ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। विषय है मिट्टी परीक्षण कराएं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। मौसम गर्मी का चल रहा है, इस समय खेत आपके खाली हैं। खाली जब खेत रहता है तो उसमें कुछ कार्य करने होते हैं। आने वाली फसल के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो भी कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। उन बातों में एक है मिट्टी परीक्षण कराना। जब आप कोई फसल लेते हैं तो उस फसल की आवश्यकता जो होती है उसकी जानकारी के लिए, खास करके पोषण आवश्यकता जो होती है उसकी जानकारी के लिए आपको मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक होता है। मूलतः मिट्टी में तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, पेड़ों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें कि आप बोरान है, मैग्नीशियम है या अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो उन चीज़ों की जानकारी के लिए कि वे पोषक तत्व आपकी मिट्टी में हैं या नहीं, कितनी मात्रा में हैं और कितनी मात्रा में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, इसके लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक होता है। तो आप पहले तो जब ये योजना बना रहे हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ की खेती करेंगे, कौन सी फसल लेंगे, उस फसल के अनुसार मिट्टी परीक्षण भी आपको कराना है। मिट्टी परीक्षण कराने के लिए सबसे पहला काम होता है मिट्टी का नमूना लेना। मिट्टी का नमूना आप कैसे लेंगे ये बात आप जान लें। आप अपने खेत को चार या पांच भागों में बांट लें और प्रत्येक भाग से आप मिट्टी निकालें। मिट्टी निकालने के लिए खुरपी की सहायता से या अन्य यंत्र की सहायता से भी आकार का गड्ढा बनावें और उसमें से लगभग 250 ग्राम मिट्टी जो है लें। तो चार या पांच जगहों से जब आप मिट्टी लेंगे, उन चार या पांच जगहों से ली गई मिट्टी को एक अखबार पर बिछा करके आप मिला लें। मिलाने के बाद उसमें से जो है 250 ग्राम मिट्टी आप लें, उसे पॉलीथीन बैग में जो

0: पैक करें और संबंधित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को भेजें। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजने से पहले आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पॉलीथीन के अंदर और पॉलीथीन के बाहर एक एक कागज जो है वो लगाना होगा, वहाँ पर टैग करना होगा। उस कागज पर कुछ जानकारी आपको लिखनी होगी। जो जानकारी लिखनी है उसमें मुख्य चीज़ है कि आप अपना नाम लिखें, पूरा पता लिखें, खेत का रकबा लिखें, उसमें आपने कौन सी फसल पिछले दिनों ली थी, आगे आने वाले समय में कौन सी फसल आप लेंगे और आप किस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में उसको जांच कराना चाहते हैं, कहाँ भेजना चाहते हैं। इन सब बातों की जानकारी उस कागज़ पर लिख करके फिर उसे जो है संबंधित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। उसमें एक और बात का आप जिक्र करें कि आपको मुख्य पोषक तत्व के बारे में परीक्षण कराना है, जानकारी लेनी है, या सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेनी है। इन सब बातों को कागज पर लिख करके एक एक कागज का टुकड़ा बाहर लगाएं और एक अंदर और प्रयोगशाला को भेजें। लेकिन मिट्टी का नमूना लेने समय भी कुछ सावधानी जो है आप बरतेंगे। जहां पर आपने खाद पिछले साल इकट्ठा की थी वहां से मिट्टी का नमूना नहीं लेंगे, छायादार जगह से मिट्टी का नमूना नहीं लेंगे, यानी कि आपके।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को

0: 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडव को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

श्रोताओं, भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। विषय है बच्चों का टीकाकरण, ध्यान देने योग्य बातें। इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार से बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: श्रोताओं नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो NMCH के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और ये हमें बताएंगे कि बच्चों के टीकाकरण में हम किन बातों का ध्यान रखें।
2: प्रसव हमारे यहाँ 80% प्रसव जो है संस्थानों में हो रहा है, तो बच्चे की छुट्टी से पहले जन्म पे 3 टीके लग जाने चाहिए और वहाँ पे MCP कार्ड बनता है, वो बनवा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ ये भी प्रथा है कि पहले बच्चे जो हैं यूजुअली नानी घर होते हैं, तो कभी स्थान बदलने के बाद वो MCP कार्ड छूट जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे का जन्म से लेकर के 5 साल तक का टीकाकरण नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में भी होता है, ये सुनिश्चित करें कि हर बार आप अपना कार्ड ले जाएं और वहाँ सारे टीकाकरण कराएं। जन्म पे बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के ड्रॉप लगते हैं। फिर बच्चा जैसे ही 1.5 महीने का होता है तो उनको पेंटावैक, मतलब 5 रोग उसमें एक साथ होता है, DPT का, एक एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो हम बच्चों में निमोनिया, गले नाक कान का इन्फेक्शन करता है वो, और हेपेटाइटिस बी, और साथ ही साथ इंजेक्टेबल पोलियो। पोलियो पहले ओरल देते थे, अब इंजेक्शन देते हैं पोलियो का, वो लगता है। और साथ में एक रोटावायरस वैक्सीन जो दस्त का सबसे प्रमुख कारण है, उस वो दिया जाता है। और उसके बाद एक और इंजेक्शन जो लगता है वो निमोकोक्कल वैक्सीन, वो भी बच्चे में संक्रमण करता है इनकी। और बच्चा फिर तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, आप हर बार कार्ड ले जाएं और इसको छोड़े नहीं। अगर अभिभावक ये सारे प्रक्रियाएं करते हैं तो उनको एक अच्छा अभिभावक माना जाता है। तो कोशिश ये करना है कि अपने कार्ड हमेशा साथ रखें और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएँ और टीके लगवाएं। उसके बाद 9वें महीने में MR का टीका लगता है, प्लस हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का भी टीका लगता है। उसके बाद बच्चा जब 1.5 साल का होता है और 15 महीने का होता है तो MMR और DPT का टीका रिपीट होता है, और फिर वही 5 साल में भी रिपीट होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी भी टीकाएँ हैं ये ऐसे बीमारियों के लिए हैं जो ठीक, मतलब अगर एक बार संक्रमण हो जाए तो बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने के दौरान बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें बुखार, सूजन या दर्द की संभावना होती है। तो आजकल पारासीटामोल का ड्रॉप, वो जो बहन या दीदी या सिस्टर्स जो आपको बताते हैं उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें। बुखार नहीं भी है लेकिन अगर बच्चा दर्द में है और दूध कम पी रहा है तब पर भी उसे दिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट में भी कुछ टीकाएं अभी मार्केट में आ रही हैं और शायद भविष्य में सरकार भी उसे लगाएंगे।
1: वो कौन कौन सी बीमारियां हैं?
2: जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं तैयारी करने जाते हैं और वहां बाहर का दूषित खाना खाते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है बाहर के खाने से, तो इसके भी टीकाकरण हैं। और साथ ही साथ एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के भी टीके अवेलेबल हैं, और कोशिश करना चाहिए कि वो करवा लिए जाएं।
1: जी, और डॉक्टर साहब कई बार होता है कि जिस दिन टीकाकरण की तारीख है या जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण होना है जी, किसी कारण से आप उस दिन नहीं जा सके।
2: जी, कोशिश यही करनी है उस स्थिति में जब आपने अपने डोजेज मिस किए हैं तो 7 दिन के अंदर उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके लगवा लेना चाहिए।

0: और मिस्ड डोजेस के भी उनके पास अपने शेड्यूल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई जन्म पे ही नहीं लगाया तो भी वहाँ शेड्यूल बना होता है, आप वो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन टीकाकरण छोड़ना नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेना है।
1: हर हालत में टीकाकरण कराना
0: जी
1: है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: स्वास्थ्य सूचनाएं कार्यक्रम में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे बच्चों का टीकाकरण, ध्यान देने योग्य बातें इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार से बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं आपको बता दें आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज सुनेंगे डॉक्टर नीरा चौधरी से शास्त्रीय गायन राग गुणकली। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन पेश करेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता और 10:45 पर सुबह प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे शोभना राव से कुछ गजल।

दोपहर 12 बजे का समय है। कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे रीना कुमारी और रीना सिन्हा। सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकारों पर आधारित कार्यक्रम सुरों का सफर प्रस्तुत करेंगे दोपहर 12:30 पर।

कानून की बातें इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे महिला और बच्चों की सुरक्षा BNS कितना सख्त, जानकारी देंगे डॉक्टर गंगेश गुंजन। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 1:05 पर।

शाम 4:30 पर आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:10 पर प्रस्तुत करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जीवंत प्रसारण।

ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर, और शाम 7 बजे कृषि खेती गृहस्थी कार्यक्रम में कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं किसान भाई।

रात्रि 8 बजे आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का, और रात्रि 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद्रकांत पाठक की आवाज में कुछ भजन। रात्रि 10 बजे प्रस्तुत करेंगे सोमवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर नीरा चौधरी से शास्त्रीय गायन राग रागेश्वरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा

0: कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल।

श्रोताओं, हालचाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मई और आज का ये दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए गवा रहा है। तो आइए सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद के कोचरब में अपने पहले सत्याग्रह आश्रम, जिसे कि बाद में साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया था, इसकी स्थापना की थी। ६३ में अफ्रीकी देशों को एकजुट करने और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 32 देशों ने मिलकर अफ्रीकी संघ का गठन किया। इसी वजह से आज के दिन को अफ्रीका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2013 में सबसे उम्रदराज एवरेस्ट जापान के 80 वर्षीय युइशिरो मियुरा ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बता दें, आज विशेष दिवस के बारे में, तो आज के दिन को वैश्विक स्तर पर विश्व थायराइड दिवस और अफ्रीकी महाद्वीप की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की तारीख से जुड़ी। आगे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, देखिए मौसम जिस तरह का है, तापमान दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बेहोशी, उल्टी, डिहाइड्रेशन, हाई बीपी और हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वैसे में डॉक्टरों का कहना है कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। तेज बुखार, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, शरीर का गर्म होना, उल्टी होना, सांस लेने में परेशानी होना, बेहोशी या भ्रम की स्थिति लगने पर लू के गंभीर लक्षण ये हो सकते हैं। और ऐसे लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाए और नज़दीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इस भीषण गर्मी में हमें खाली पेट धूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। अधिक देर तक धूप में खड़े ना रहें। ज़्यादा तना भुना और मसालेदार भोजन खाने से बचें। बंद वाहनों में बच्चों या बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें और लू के लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाएं। और इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए इसकी बात करें तो पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं, ORS, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी का सेवन करें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहनें, सिर को गमछा, टोपी या छाते से ढककर ही बाहर निकलें, घर और ऑफिस को ठंडा रखने का प्रयास करें और इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। जब तक ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलना हो तो दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, उसके बाद आप निकल सकते हैं। तो ऐसे कई बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गर्मी से निश्चित तौर पर आप निजात पा सकेंगे और आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी।

0: पूछूंगा तुमसे, पूछूंगा तुमसे बात, चाहे रहो दूर चाहे रहो।
1: श्रोता, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत अमरपाल और साथियों से।

अमरपाल और साथियों से भी आप सुन रहे थे भटियाली गीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है शास्त्रीय गायन। आज हम सुनेंगे डॉक्टर नीरा चौधरी से राग गुणकली। तबले पर साथ दे रहे हैं नंदन कुमार ठाकुर और तानपुरे पर हैं विनोद पाठक। तो लीजिए सुनिए राग गुणकली डॉक्टर नीरा चौधरी से। पहले प्रस्तुत है विलंबित रूपक ताल में और फिर सुनेंगे द्रुत तीन ताल में।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरा चौधरी से राग घुड़कली। तबले पर इनका साथ दे रहे थे नंदन कुमार ठाकुर और तानपुरे पर थे विनोद पाठक।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको

0: लाख 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
4: बिटवीन टू नेशंस एंड रिमेन्स अ लिविंग ब्रिज।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
5: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर

0: ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में

0: राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के अतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से BJP के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में BJP कारकुनों की उनके

0: कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी माहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये माहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए माहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई माहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा माहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये माहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए माहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मुअज्जमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर कस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह इतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के इडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी

0: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से का...

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। आज जिन विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनमें बिहार की 3 हस्तियां शामिल हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं टोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले विश्व बंधु और भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्वबंधु को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर करने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन में महिलाओं को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मछली का उत्पादन 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के मछली बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 41 लाख से अधिक परिवारों का पक्का मकान बनाया जा चुका है। इस पर 5,57,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में भी अच्छी प्रगति है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग जल्द ही नई नीति लागू करने जा रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह के दौरान श्री तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। सांसद ने बताया कि CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया है। नया पाठ्यक्रम CBSE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में कक्षा एक से माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों ने कल बोधगया का भ्रमण किया। इस दौरान युवाओं ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बकरीद को लेकर 28 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। मीना में रात गुजारने के बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल की बात।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पूर्वा और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम के

0: दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार जहां एक ओर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी ओर उत्तर बिहार में आंधी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में गर्म दिन और लू चलने की चेतावनी जारी की है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: विभाग ने उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण जिले में कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 43.9, कैमूर का 43.7, औरंगाबाद का 43.1 तथा गया और शेखपुरा का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के वर्ग संचालन पर 31 मई तक, जबकि भोजपुर जिला प्रशासन ने 27 मई तक रोक लगा दी है। प्रदेश में पिछले दो सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। लू से प्रभावित मरीजों को यह टीम तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाएगी और इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोई भी हीट वेव से प्रभावित मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान, पौधारोपण अभियान, प्रगति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य का साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1930 जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित होगा। इससे कॉल सेंटर पर साइबर अपराध और ठगी से जुड़ी शिकायतें वर्तमान के मुकाबले काफी कम समय में दर्ज हो सकेंगी। IG साइबर अपराध रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था में कार्रवाई में लगने वाला समय घटेगा और पीड़ितों को गोल्डन आवर का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि AI से सूचना की सटीकता बढ़ेगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। पटना जिले के पचमला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के बाद कुख्यात सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम की घर वालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में दो थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं पाए जाने के चलते पचमला और हाथीदह थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। इधर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने खवासपुर थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर एक मामले में हिरासत में लिए युवकों को छोड़ने के लिए 50,000 रूपए घूस मांगने का आरोप है। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 16 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के कमरिया उपशाखा नहर के पास शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें एक महिला होमगार्ड और पीटीसी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त

0: कर दिया और महिला होमगार्ड की राइफल भी छीन ली। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अररिया जिले के कुवारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 115 किलो गांजा बरामद किया है। बेगूसराय पुलिस ने एक मामले में 20 वर्षों से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के बबुरा गांव से पुलिस ने पशु तस्करों से 1 दर्जन पशुओं को मुक्त कराया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सरकार उद्यमियों को सुरक्षा और भरोसा देगी। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को कॉम्फेड के माध्यम से दी जाएगी उन्नत नस्ल की गाय भैंस और बकरी। प्रभात खबर की सुर्खी है, पाकिस्तान में सैन्य कर्मियों की ट्रेन पर आत्मघाती हमला 24 की मौत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 48 घंटे तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम, फिर बदलेगा मौसम। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की 3 हस्तियों को आज मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। आज अखबार की सुर्खी है, 1.5 लाख बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहाँ चलती है, इधर तो
6: इधर आइए, इधर
7: इधर।
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504।

0: हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

हमारे सामईन कराम को उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की मेज़बान शगुफ्ता का आदाबोस सलाम पेश है। सामईन, आज के इस पुरनूर सुबह के साथ ही आइए हम आज के अंजुमन का आगाज़ करते हैं एक प्यारी सी गज़ल के साथ। आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ खूबसूरत सी गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: हम फिर हाजिर हैं अंजुमन के साथ। दोस्तों, रास बिहारी बोस ही आज़ाद हिंद फौज के बानी थे। उन्होंने जापान में मुकीम हिंदुस्तानी कैदियों और तारकीन वतन को मुनज़्ज़म करके आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। इनकी इब्तदाई तालीम चंद्रनगर से मुकम्मल हुई और शिमला और देहरादून में उन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत भी की है। आपको बताएं सामीन कि दिल्ली में ब्रिटिश वायरस लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर हुए बम हमले के पीछे रास बिहारी बोस ही मास्टरमाइंड थे। सामीन, हमारी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा है कि आज की खास पेशकश महफिल सुखन की जानिब कदम बढ़ाया जाए। तो आइए समात करते हैं मोहम्मद कसीम अहमद की निजामत में सजने वाली आज की महफिल सुखन।
1: सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। हजरात, महफिल सुखन यानी स्टूडियो मुशायरे में आप सबों का इस्तकबाल है। आज के इस स्टूडियो मुशायरे में हमारे दरमियान मोहतरमा अंजुम आरा औरंगाबाद से तशरीफ़ फरमा है, जनाब मीम सरवर पंडौलवी मधुबनी से, और ये खाकसार मोहम्मद कसीम अहमद रहबर गियावी अलमारूफ चोंच गियावी। आइए, मैं बिला किसी तमहीद के आज के इस स्टूडियो मुशायरे का आगाज अंजुम आरा के कलाम से करना चाहता हूँ। मैं उन्हें इन दो मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
2: वाह
1: मोहतरमा अंजुम आरा, आप सबों की समात के हवाले अपने कलाम के साथ।
2: इरशाद,
3: गजल से कबल मैं अपने शेरी सफर का आगाज चार मिसरों के साथ करती हूँ, मुलाहिजा करें।
1: इरशाद।

0: क्या कहने
1: कोई
0: हैं।
1: रिश्ता
0: बेशक
1: नहीं
0: बेशक बेशक,
1: होता,
0: बहुत खूब,
1: दिया
0: वाह वाह
1: ना
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: मगर माँ बाप से बढ़कर
0: कोई
1: कोई
0: कोई रिश्ता नहीं होता, बेशक
1: रिश्ता नहीं होता।
0: बेशक बेशक,
1: अब मुकम्मल गजल समाप्त करें।
0: इरशाद।

0: वो मौसम प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले,
1: प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले।
0: वाह,
1: और ये भी शेर देखिए,
0: इरशाद हो इरशाद।
1: जहां पहले किया करते थे बातें बैठ कर हम तुम,
0: जहां पहले किया
1: जहां
0: करते

0: क्या कहने हैं,
1: नहीं
0: वाह वाह वाह वाह,
1: भूले
0: अच्छा बहुत खूब।
1: तेरी जुल्फों की खुशबू के खजाने हम
0: नहीं
1: नहीं
0: भूले।
1: भूले। और मक्ते का शेर समाप्त
0: इरशाद
1: करें।
0: इरशाद।

0: वाह, अंजुम आरा साहबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने और एक कलाम से नवाजें।
1: जी जी इरशाद
2: जी, बहुत शुक्रिया शीश।

0: बहुत खूब।
1: उनके सूरत से कहाँ मिलती है किसी की
0: वाह, उनकी सूरत से
1: सूरत,
0: कहाँ मिलती
1: उनकी
0: है किसी
1: सूरत
0: की
1: से कहाँ
0: सूरत।
1: मिलती।

0: जिसको देखो वही दुनिया में मगन मिलता है।
1: जिसको
0: जिसको
1: देखो
0: देखो
1: वही
0: वही
1: दुनिया
0: दुनिया
1: में
0: में
1: मगन

0: कबूतर का।
1: वाह वाह वाह,
2: कुदरत
0: अच्छा
2: जो
1: मुझको
2: बना
1: कुदरत
2: देती कबूतर जैसा, अपनी ही कौमी का भाई था सितमगर जैसा।
1: वाह,
2: जिस तरफ देखिए हर समते ही वीरानी
1: जिस तरफ देखिए हर समते ही

0: क्या कहने हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: घर का मंजर,
2: शहराओं के मंजर भी है, शहराओं के मंजर जैसा। और मक्ते का शेर
0: इरशाद,
2: गम की सभी नदियाँ समा जाती हैं मुझ में अंजुम,
0: गम की सब नदियाँ समा जाती हैं मुझ में।

0: बहुत शुक्रिया।
1: हजरत अभी अंजुम आरा साहबा अपने कलाम से नवाज रही थीं। आपने महसूस किया होगा कि इनके कलाम में जहां निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी हो रही थी, वहीं भरपूर तकज्जुल भी आपको सुनने को मिल रहा था। आइए हजरत, अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और रुख करता हूं मधुबनी का, जहां से हमारे दरमियान मीम सरवर पंडौलवी तशरीफ़ फरमा है। मीम सरवर पंडौलवी किसी भी तौर मोहताज तारुफ नहीं है। उसे संगलाख ज़मीन से एक अच्छा शायर उर्दू दुनिया में हलचल मचा रहा है और इनकी शिरकत मुशायरों में मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत मानी जाती है। मैं जनाब मीम सरवर पंडौलवी को उन्हीं के मतलब से दावत कलाम दे रहा हूँ। सोचा है मैंने काम का पौधा लगाऊंगा, एक दिन तुम्हारे नाम का पौधा लगाऊंगा। जनाब मीम सरवर पंडौलवी, आपकी समाअत के हवाले।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रहबर भाई। अपने शेरी सफ़र का आगाज़ पहले एक मतला, दो तीन शेर,
1: इरशाद।
2: बिल्कुल ताज़ा मतला है। अब कभी तेरे इशारे पे नहीं आऊँगा,
1: अब कभी
2: अब
1: तेरे इशारे
2: कभी
1: पे नहीं
2: तेरे
1: आऊंगा।
2: इशारे पे नहीं आऊँगा, डूब जाऊँगा किनारे पे नहीं आऊँगा।
1: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह।
2: अब कभी तेरे इशारे
1: इशारे
2: पे
1: पे नहीं
2: नहीं
1: आऊंगा,
2: आऊँगा,
1: डूब जाऊंगा,
2: डूब जाऊँगा किनारे
1: किनारे पे
2: पे
1: नहीं
2: नहीं
1: आऊंगा।
2: आऊँगा। सैकड़ों बार बुलाकर दिए धोखे तूने, सैकड़ों बार बुलाकर दिए धोखे तूने, मैं कभी
1: अच्छा,
2: तेरे पुकारे पे नहीं
1: वाह
2: आऊंगा।
1: वाह वाह, क्या अलमिया पेश कर रहे थे भाई।
2: मैं कभी तेरे पुकारे पे नहीं आऊंगा।
1: वाह।
2: मेरी नजरें पसे मंजर भी बहुत देखती हैं, मेरी नजरें पसे
1: पसे
2: मंजर
1: मंजर
2: भी
1: भी
2: बहुत
1: बहुत
2: देखती
1: देखती हैं।
2: हैं, तेरे खुश रंग नज़ारे पे नहीं आऊंगा।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: तेरे खुश रंग नज़ारे
1: नजारा
2: पे
1: पे
2: नहीं
1: नहीं आऊंगा।
2: आऊंगा।
1: वाह,
2: और दो तीन मुतफर्रिक अशआर,
1: इरशाद हो।
2: बांटता फिरता है सबको रोशनी कहकर इसे,
1: बांटता
2: बांटता फिरता
1: फिरता
2: है
1: है सबको
2: सबको
1: रोशनी कहकर
2: रोशनी
1: इसे।
2: कहकर इसे, शोभदा गरने किया है यूं धुआं आरास्ता।
1: वाह
0: वाह,
2: बांटता फिरता है सबको रोशनी कहकर इसे, शोभदा
1: शोभदा।
2: गरने किया है यूं धुआं आरास्ता। खुरदुरी गजलों पे इसकी क्या भला तौकीर हो,
1: हाँ,
2: खुरदुरी गजलों पे इसकी
1: क्या
2: क्या
1: भला
2: भला
1: तौकीर
2: तौकीर
1: हो,
2: हो, एक गजल सरवर की कोई है कहाँ आरास्ता।
1: क्या कहने हैं
2: एक गजल
1: भाई।
2: सरवर की कोई है
1: वाह
2: कहाँ
1: वाह वाह वाह,
2: आरास्ता। एक मतला और एक शेर,
1: इरशाद।
2: जैसा वो नजर आता है वैसा तो नहीं है,
1: जैसा वो नजर आता है
2: जैसा
1: वैसा तो
2: जैसा
1: नहीं
2: वो
1: है,
2: नजर आता है
1: वैसा तो
2: वैसा
1: नहीं
2: तो
1: है।
2: नहीं है, शाने पर जो चेहरा है ये उसका तो नहीं है।
1: क्या
2: वाह वाह वाह,
1: कहने हैं,
2: बहुत
1: क्या कहने
2: शुक्रिया।
1: हैं। वाह,
2: जैसा वो नजर आता
1: वैसा तो
2: है
1: नहीं है,
2: वैसा तो नहीं है,
1: शाने पे
2: शाने पर जो चेहरा है ये
1: वो
2: उसका तो
1: उसका तो
2: नहीं
1: नहीं
2: है।
1: है।
2: और जिस शेर के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा कि मैं तीर लिए सोच में बैठा रहा घंटों,
1: मैं तीर लिए सोच
2: मैं
1: में
2: तीर
1: बैठा
2: लिए
1: रहा हूं,
2: सोच में बैठा रहा
1: बैठा रहा
2: घंटों,
1: घंटों।
2: दुश्मन की सफों में कोई अपना तो नहीं है।
1: आ
2: वाह
1: हा
2: वाह,
1: हा
2: क्या
1: हा,
2: बात
1: क्या
2: है,
1: कहने हैं
2: क्या
1: भाई।
2: बात
1: वाह
2: है।
1: वाह
2: तीर
1: वाह वाह,
2: लिए सोच में बैठा
1: वाह
2: रहा
1: वाह वाह वाह,
2: घंटों,
1: खूब।
2: दुश्मन की सफों में कोई अपना
1: अपना
2: तो
1: तो
2: नहीं
1: नहीं
2: है।
1: है,
2: शुक्रिया रहबर भाई। और एक मतलब और चंद शेर,
1: इरशाद।
2: सोचा है मैंने काम का पौधा लगाऊंगा, सोचा है
1: सोचा है
2: मैंने
1: मैंने
2: काम
1: काम का
2: का
1: पौधा
2: पौधा
1: लगाऊंगा,
2: पौधा लगाऊंगा, एक दिन
1: एक दिन
2: तुम्हारे
1: तुम्हारे
2: नाम
1: नाम का
2: का
1: पौधा
2: पौधा
1: लगाऊंगा। क्या कहने हैं भाई,
2: लगाऊंगा,
1: वाह वाह
2: एक
1: वाह
2: दिन
1: वाह,
2: तुम्हारे नाम का
1: पौधा
2: पौधा
1: लगाऊंगा।
2: लगाऊंगा। तुम जिस जगह लगाओगे पौधे बबूल के, तुम जिस जगह लगाओगे
1: पौधे बबूल
2: पौधे
1: के, पौधा
2: बबूल के, मैं उस जगह ही आम का पौधा
1: लगाऊंगा। वाह
2: लगाऊंगा।
1: वाह वाह वाह
2: क्या
1: वाह वाह वाह वाह,
2: शुक्रिया,
1: बहुत खूब,
2: नवाजिश। मैं उस जगह ही आम का
1: पौधा
2: पौधा
1: लगाऊंगा।
2: लगाऊंगा। अब बच्चे मेरे न पाएंगे मीठे समर कभी, बच्चे
1: बच्चे
2: मेरे
1: मेरे
2: न
1: न
2: पाएंगे
1: पाएंगे मीठे समर
2: मीठे
1: कभी,
2: समर कभी, घर में अगर हराम का
1: पौधा
2: पौधा
1: लगाऊंगा। अच्छा है,
2: लगाऊंगा।
1: अच्छा है, वाह वाह।

0: अच्छा,
1: वाह वाह, बहुत
0: नवाजिश।
1: खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह
0: बच्चे
1: वाह।
0: मेरे न पाएंगे मीठे
1: मीठे
0: समर
1: समर कभी,
0: कभी, घर
1: वाह
0: में अगर हराम का पौधा
1: पौधा लगाऊंगा,
0: लगाऊंगा,
1: वाह।
0: रावण से नाग चाहे लिपट जाए शाख से।
1: हाँ
0: शेर देखिएगा,
1: जी जी इरशाद,
0: रावण से नाग चाहे लिपट जाए शाख से, चंदन सा एक राम का
1: पौधा
0: पौधा
1: लगाऊंगा।
0: लगाऊंगा,
1: वाह वाह वाह
0: चंदन
1: वाह,
0: सा एक राम का पौधा लगाऊंगा, ताके रहे जमीन हमारी हरी भरी, ताके रहे जमीन
1: हमारी हरी
0: हमारी हरी
1: हरी,
0: भरी, तिश्ना लबी में जाम का
1: पौधा
0: पौधा
1: लगाऊंगा।
0: लगाऊंगा,
1: वाह वाह वाह
0: तिश्ना
1: वाह,
0: लबी में जाम का पौधा लगाऊंगा। मख्ता देखे, इज्जो शरफ नसीब में सरवर मेरे कहाँ, इज्जो
1: इज्जो
0: शरफ
1: शरफ
0: नसीब
1: नसीब में
0: में
1: सरवर मेरे
0: सरवर मेरे
1: कहाँ।
0: कहाँ, फिर क्यों ख्याले खाम का
1: पौधा
0: पौधा
1: लगाऊंगा।
0: लगाऊंगा,
1: अच्छा है,
0: फिर
1: अच्छा
0: क्यों
1: है,
0: ख्याले खाम का
1: वाह वाह
0: पौधा
1: वाह वाह,
0: लगाऊंगा।
1: बहुत खूब,
0: दो तीन अशआर तरन्नुम में समात फरमा लें,
1: इरशाद हो, इरशाद
0: छोटी
1: हो।
0: बहर में।

0: वाह वाह वाह,
1: बात शुक्रिया। बात क्या है,
0: के हर
1: शेर देखें मुजरमा,
0: इरशाद।
1: उसका साथी बिछड़ गया है क्या,
0: उसका साथी बिछड़ गया
1: उसका
0: है क्या?

0: क्या कहने हैं भाई।
1: एक पंछी,
0: एक पंछी है
1: शुक्रिया,
0: डाल पर खामोश, क्या कहने
1: एक
0: हैं।
1: नवाजिश, डाल पर खामोश एक पंछी
0: वाह वाह वाह वाह।
1: उसकी

0: उसकी गोयाई सलब हो बैठी, मुझको महफिल में देख कर
1: वाह
0: खामोश,
1: वाह वाह वाह,
0: मुझको महफिल में
1: देख कर
0: देख
1: खामोश।
0: कर खामोश, मुझको महफिल। ये शेर खसूसी तौर पर
1: इरशाद।

0: होता
1: खूब
0: नवाजिश।
1: बहुत खूब।
0: और सुनता रहे दिगर खामोश, और सुनता शेर आखिर कट

0: हजरत, अभी आप जनाब मीम सरवर पंडौलवी से उनका मुरस्सा और मुसज्जा कलाम समात फरमा रहे थे। अभी इनके कलामों में जहाँ एक तरफ अज़्म मुसम्मम झलक रहा था कि मैं पौधा लगाऊंगा, क्या क्या पौधा लगाने की बात ये कर रहे थे, उसी तरफ जो है दूसरी तरफ ये आज का अलमिया भी पेश कर रहे थे, ख़ास तौर से ये शेर कि कट रहा था पड़ोस का भाई, कर भी
1: करेक्ट
0: सकता था क्या शजर खामोश। तो ये एक अलमिया था। आइए मीम सरवर पंडौलवी के बाद अब मैं खुद आपसे मुखातिब होता हूँ। आइए मैं अपने कलाम से चंद अशार पेश करता चलूँ। एक गजल के चंद अशार मुलाहजा फरमाएं।
1: इरशाद
0: अर्ज
1: रहमान,
0: किया कि खौफ से आजाद हर इंसान होना चाहिए,
1: खौफ से आजाद हर
0: खौफ से
1: इंसान
0: आजाद
1: हर
0: हर
1: इंसान
0: इंसान होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का ऐलान होना
1: होना
0: चाहिए,
1: चाहिए,
0: खौफ से आजाद हर इंसान होना चाहिए,
1: इश्क है
0: इश्क है तो इश्क का ऐलान होना चाहिए।
1: चाहिए।
0: और शेर मुलाहजा फरमाए कि कामयाबी कह रही है चूमूंगी आकर कदम, कामयाबी कह रही है
1: चूमूंगी,
0: चूमूंगी आकर कदम, हर बशर को साहिबे ईमान होना
1: वाह वाह
0: चाहिए।
1: वाह वाह वाह, बहुत
0: कामयाबी
1: खूब
0: जी, शुक्रिया, बहुत बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: खूब।
0: कामयाबी कह रही है चूमूंगी आकर कदम,
1: हर
0: कामयाबी कह रही है चूमूंगी आकर
1: आकर कदम
0: कदम,
1: हर
0: हर
1: बशर को
0: बशर को साहिबे
1: साहिबे
0: ईमान
1: ईमान
0: होना
1: ईमान,
0: चाहिए। और
1: बेशक
0: शेर
1: बेशक
0: मुलाहजा फरमाए, हौसले का
1: बेशक,
0: शेर है
1: बहुत खूब।
0: कि आसमां से तोड़कर ला सकते हो तारे, मगर
1: आसमां से
0: आसमां
1: तोड़कर
0: से तोड़कर
1: ला सकते हो
0: ला सकते
1: तारे,
0: हो तारे,
1: मगर
0: मगर शर्त है इसका तुम्हें अरमान होना
1: वाह
0: चाहिए।
1: वाह वाह,
0: शर्त है
1: बहुत
0: जी,
1: खूब,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: मुकम्मल
0: शुक्रिया
1: हौसले का शेर।
0: जी, शुक्रिया। गजल के चंद अशार हाजिर
1: इरशाद
0: खिदमत कर रहा
1: इरशाद
0: हूं। मुलाहजा फरमाए कि बात
1: इरशाद,
0: पक्की हो गई जब दाम की,
1: जब
0: बात पक्की हो गई जब
1: दाम
0: दाम
1: की,
0: की, हर गजल मैंने तुम्हारे नाम
1: हाय
0: की।
1: हाय
0: जी
1: हाय हाय, हर
0: शुक्रिया।
1: गजल मैंने तुम्हारी
0: बात
1: नाम
0: पक्की
1: की,
0: हो गई जब दाम की, हर गजल
1: मैंने
0: मैंने
1: तुम्हारे
0: तुम्हारे
1: नाम
0: नाम
1: की।
0: की। और शेर देखें कि मशवरा इस बार माना जाएगा,
1: इस
0: मशवरा
1: बार माना
0: मशवरा इस
1: जाएगा,
0: बार माना जाएगा, अब के तुमने बात की है काम की,
1: वाह वाह वाह
0: मशवरा इस बार
1: वाह,
0: माना जाएगा,
1: हाँ
0: अब के तुमने
1: ने बात
0: बात
1: की
0: की
1: है
0: है
1: काम
0: काम
1: की।
0: की। और शेर देखें कि बाद में जो होगा देखा जाएगा,
1: बाद में जो
0: बाद
1: होगा,
0: में जो होगा देखा जाएगा, फिक्र है किसको पड़ी अंजाम की, बाद
1: वाह
0: में जो
1: वाह,
0: होगा देखा
1: फिक्र है
0: जाएगा,
1: किसको पड़ी
0: फिक्र
1: अंजाम
0: है
1: की।
0: किसको पड़ी अंजाम की।
1: अच्छा,
0: और शेर मुलाहजा फरमाए कि राह के पत्थर हटाएं मिलके हम, राह के पत्थर हटाएं
1: मिलके
0: मिलके
1: हम,
0: हम, है परेशानी ये खासो आम
1: है
0: की,
1: परेशानी ये
0: है
1: खासो, बहुत खूब
0: परेशानी ये
1: बहुत खूब
0: खासो आम
1: बहुत
0: की।
1: खूब,
0: और आखिरी शेर हाजिर खिदमत कर रहा, मुलाहजा फरमाए कि रात के खाने का लम्हा आ गया, रात के खाने का लम्हा आ गया, अब तलक चाय नहीं पी शाम की,
1: वाह वाह
0: रात
1: वाह
0: के
1: वाह
0: खाने का लम्हा आ गया,
1: वाह वाह,
0: अब तलक चाय नहीं पी शाम की। इस कलाम के साथ ही आज का ये स्टूडियो मुशायरा यानी महफिल सुखन अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। एक बार फिर मैं बताता चलूं कि आज के इस स्टूडियो मुशायरे में औरंगाबाद बिहार से मोहतरमा अंजुम आरा तशरीफ फरमा है, मधुबनी बिहार से जनाब मीम सरवर पंडौलवी, और ये खाकसार रहबर गियावी गया बिहार से। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर
1: फिर मिलेंगे
0: मिलेंगे
1: अगर
0: अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

0: सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे महफिले सुखन। एक बहुत अहम बात सामिन हजरात के, आपसे भी जानते हैं कि रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तानी फौजियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पर उकसाया था। ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद वह 1915 में जापान चले गए और वहाँ पैन एशियन गिरोहों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करते रहे और वहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बुनियाद रखी। सामिन, आपको ये भी बता दें कि जापान के शहनशाह ने उन्हें जापान के दूसरे सबसे बड़े सिविल एजाज ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा है। जी हाँ सामिन, ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी ऐसे इजाजात हासिल करे, ये शख्सियत थी हमारे इस मुल्क के अजीम रास बिहारी बोस साहब की। इसके साथ ही सामीन, आज की अंजुमन अपने ख़त्म के करीब पहुंचती है, लेकिन चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल। आइए समात करते हैं ये गज़ल।
1: सुन

0: एक हमारे दोस्त थे लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात ये कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूँ, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है, तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूँ, तुमको दिखता नहीं।
1: सामीन हर चीज़ वैसे भी दुआओं से हासिल की जाती है और आप सब जानते हैं कि ये माह दुआओं की कबूलियत का माह चल रहा है जिसे हम कहते हैं ज़िलहज। जी हाँ, ज़िलहज का महीना रवा है और अपनी दुआओं में हम सबको आप रखिए याद और साथ ही सभी का रखिए ख्याल, क्योंकि जब हम किसी का ख्याल रखने की बात करते हैं तो बात आती है इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की। बहुत अजीबोगरीब सा मौसम है और कब कहाँ किसको क्या हो जाए, इसलिए हमेशा याद रखिए कि सेहत बहुत अहम हो जाती है तब जब आपके अपने कड़ी तपिश वाली धूप में बाहर निकलें, तब भी जब आप घर पर रहें, क्योंकि पानी बहुत अहम है। पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और बहुत परेशानी की बात यह है कि डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। तो इस गर्मी के मौसम में अपने जिस्म को तरोताज़ा रखिए, पानी से सराबोर करके रखिए, पानी की कमी ना होने दीजिए। जो भी हो सकता है आप जब बाहर निकलते हैं तो बड़ा मेहरबानी माजरत के साथ अगर आपको बुरा लगे तो कोल्ड ड्रिंक ना पी करके सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप नींबू पानी लीजिए, नारियल का पानी लीजिए या कोई जूस ले लीजिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से अपने आप को बचाइए क्योंकि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में वो बहुत ख़तरनाक तरीके से असर हो जाता है जिस्म के ऊपर और हमें पता भी नहीं चलता और फिर हम हॉस्पिटल में परेशान होते हैं सब लोगों के साथ। तो ये दुआएं हैं कि आप सब रहें सेहतमंद शादो आबाद। अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। आज की अंजुमन यहीं अख्ताम पर होती है, कल फिर से जाएगी अंजुमन। सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए रस मंजरी। श्रोता और रस मंजरी कार्यक्रम में आप सभी को सुनवा रहे हैं पहला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में क्वीन फिल्म से। अनविता दत्ता के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता और रसमंजरी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना जीरो फिल्म से, अभय जोधपुरकर की आवाज में। रिशाद कामिल के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है अजय अतुल ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यह आकाशवाणी पटना है और आप सुन रहे हैं रसमंजरी। कार्यक्रम में लीजिए पेश है अगला गाना मोहित चौहान की आवाज में, तमाशा फिल्म से।

आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में द डर्टी पिक्चर फिल्म का ये गाना। रजत अरोड़ा के बोल पर इस गाने को कंपोज किया है विशाल शेखर ने।

0: सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा की आवाज़ में ये गाना भी आप सुन रहे थे टेंशन फिल्म से। पीयूष मिश्रा के बोलते संगीत विशाल शेखर का था और इसी के साथ रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं अंग्रेजी वार्ता। विषय है वुमेन ड्राइविंग डिजिटल इनोवेशन।
1: Let me not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless in facing them. Let me not beg for the stilling of my pain, but for the heart to conquer it. Let me not cross the sea merely by standing and staring at the water, but by swimming against the tides. These are the words of Rabindranath Tagore. They are words that are befitting to the nature of all hard-working women. Today, as we move from one generation to another, the world holds a better place for equality among all human beings. Today, it is safe to say women have made a notable mark with their presence in various professions.

0: जान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ गजल। पेश करेंगे कलाकार हैं शोभना राव।

अभी आप शोभना राव से सुन रहे थे ये गजल। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडे वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, लता मंगेशकर की आवाज में। लीजिए सुनिए ये पहला गाना जमीन आसमान फिल्म से, अनजान के बोल, और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और संगीत आर डी बर्मन का था।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

Akashwadi at 90. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए बेमिसाल फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रीना कुमारी और रीना सिन्हा।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में पहले सुनिए रीना कुमारी से देवी गीत।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे रीना कुमारी और रीना सिन्हा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफर।

0: मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमान, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमान, कह मोहब्बतों का हूँ राजदान, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं।
1: जिंदगी

नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरों के सफर में, जिसमें हम लेकर आए हैं एक शायर की दास्तां, जिसने हिंदी उर्दू फिल्मी गीतों को चाशनी जैसा मीठा कर दिया।

0: शकील बदायूनी। जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में। शकील का असली नाम था शकील अहमद। बचपन से ही उन्होंने अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी की तालीम पाई। अलाहाबाद के मशहूर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उन्होंने शायरी की दुनिया में कदम रखा और मुशायरों में खूब वाहवाही लूटी।
1: निगाह शौक से कह दो।

0: और ऐसे ही एक मुशायरे के लिए 1944 में मुंबई आए शकील। उस दौर में नामचीन फिल्मी हस्तियां मुशायरों में जौहरी बनकर हीरे की तलाश में रहती थीं। खुशनसीबी से शकील की मुलाकात नौशाद से होती है, जहां नौशाद शकील को अपनी शायरी बस एक लाइन में समेटने को कहते हैं। शकील कहते हैं,
1: हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे।
0: उसी समय A.R. कारदार की फिल्म दर्द बन रही थी। नौशाद फौरन ये फिल्म शकील को ऑफर करते हैं। शकील का लिखा गाना उमा देवी ने गाया। जी हाँ, वही उमा देवी जिन्हें हम उनके फिल्मी नाम टुनटुन के नाम से जानते हैं। गाना ऐसा हिट हुआ कि आज भी संगीत प्रेमियों के जेहन में ये लाइनें मौजूद हैं।

और अगर फिल्म हिट हो भी जाए तो उस सफलता का दौर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शकील ने दर्द के बाद लगातार हिट और सुपरहिट गाने लिखे, जबकि वो दौर था जब शायर भूख और बेरोजगारी के किस्से बयां कर रहे थे और दूसरी तरफ शकील ने अपना रूमानी अंदाज जारी रखा और सफलता भी पाई।

इन फिल्मों की लंबी फहरिस्त में शामिल है सन 1951 में आए दीदार का, 1952 में बैजू बावरा, 1957 में मदर इंडिया और 1960 में मुगले आ

फिल्म बैजू बावरा के निर्देशक विजय भट्ट चाहते थे कि फिल्म के गाने कवि प्रदीप से लिखवाए जाएं, लेकिन नौशाद ने उन्हें शकील के लिए तैयार कर लिया। फिल्म में भक्ति भाव से ओतप्रोत गाना लिखा जाना था। निर्देशक के मन का संदेह तब दूर हो गया जब नौशाद के संगीत में शकील के बोल को उस गजब के गायक मोहम्मद रफी ने गाया। आज भी ये गाना संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है।

शकील को यह सफलता यूं ही नहीं मिली थी, इसके पीछे उनकी मेहनत थी, लगन थी। इनके अपने काम के प्रति समर्पण को लेकर एक और रोचक किस्सा है। के आसिफ अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मुगले आजम बना रहे थे। फिल्मी दुनिया में किसी और फिल्म को लेकर इतनी चर्चा कभी नहीं हुई थी। भारी भरकम बजट वाले इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण गाना अनारकली पर फिल्माया जाना था। इस गाने के लिए उस समय का सबसे महंगा सेट तैयार किया जा रहा था, जो हाल के दिनों तक सबसे महंगे 10 हिंदी फिल्म गानों की फहरिस्त में शामिल था। शकील के लिखे गीत से नौशाद संतुष्ट नहीं थे। गाने को लेकर नौशाद के घर की छत पर शाम से जो चर्चा शुरू हुई वो अगली सुबह तक जारी रही। नौशाद को उत्तर प्रदेश के एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां गाने में चाहिए थीं और शकील ने उसे बखूबी अपनी नज्म में शामिल कर लिया। इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया और ये गाना आज भी लोगों को याद है।

1961, 62 और 63 में 3 साल लगातार फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाली फिल्मों 14वीं का चांद, घराना और 20 साल बाद के लिए उन्होंने बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड हासिल किए। उनकी नज्मों की किताबें नगमा ए फिरदौस, कुल्लियात ए शकील आज भी उर्दू हिंदी शायरी के प्रेमियों के बीच पूजनीय है। इसके अलावा उनके लिखी नज्मों को बेगम अख्तर और पंकज उधास तक ने गाया और खूब शोहरत हासिल की।

20 अप्रैल 1970 को मात्र 53 वर्ष की आयु में मुंबई में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। आइए हम सब उन्हें याद करें एक ऐसे शायर के रूप में जिन्होंने शब्दों के जरिए हमारे दिलों के दरवाजे खोल दिए। यही थी कहानी हमारी शकील बदायूनी, रोमांस के शायर की।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: समाचार के साथ मैं कनक लता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म

0: भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, BNS कितना सख्त। भेंटवार्ताकार है अधिवक्ता कुमार गंगेश गुंजन, भेंट करता हरिंद्र आजाद।
4: नमस्कार, मैं हरिंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कानून की बातें में। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के BNS कितना सख्त है इसके बारे में, और इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गंगेश गुंजन। आप पटना हाईकोर्ट में जाने माने अधिवक्ता हैं और लंबा कार्य अनुभव है। हम विस्तार से जानेंगे इस विषय पर। सबसे पहले कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
4: सर, जैसा कि मैंने बताया कि अब IPC के जगह BNS ने ले लिया है, और BNS में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से क्या विशेष प्रावधान है, कैसे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कानून है?
5: जहाँ तक BNS और IPC का सवाल है
4: जी
5: हरेंद्र बाबू, जैसा कि आपको जानकारी होगी, पूरे देश को जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी है, जब दिसंबर में निर्भया की घटना घटी थी उसके बाद 13 में IPC में बहुत ही विस्तृत पैमाने पर, जब अलग सेक्शन था 375-76, तो उसमें पूरे विस्तार से उसमें उस समय ही चेंज आए थे
4: जी।
5: जैसे पहले रेप की घटना में या रेप के बाद जो घटनाएं होती थी उसके जो प्रावधान थे उसमें बहुत ही सख्त हुए
4: जी।
5: इवन कि इसमें पहले रेप के केसेज में या रेप के बाद जो मर्डर होते थे उसमें जो हत्या हो जाती थी, मृत्यु तक तो था, फांसी का प्रावधान नहीं था, मृत्यु दंड हो जाए तो फिर फांसी। अब तो 10 साल से आप समझ लीजिए कि कोई भी घटना अगर घटती है महिलाओं के साथ
4: जी,
5: तो वो कम बस 10 साल से नीचे की कोई सजा नहीं है
4: जी।
5: सारी सजाएं 10 साल से ऊपर की हैं, 10 साल से फांसी की तक, ये पूरी सजा है। 2023 में जब ये सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है, जो बहुत सारे ऐसे कानून थे, बहुत सारे ऐसे एक्ट, उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिन

0: को लगा कि बहुत पेचीदा है या जिनको समझना लोगों के लिए आसान नहीं हो रहा है, इसको बहुत ही सहज और सुलभ तरीके से कुछ चीज़ों को विस्तारित किया और कुछ चीज़ों को कम किया। विस्तारित करने में खास करके महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस दिया गया। जो आपका संदर्भ है, जो आपने प्रश्न किया है, बड़ा ही तार्किक और समय के साथ जो चलने वाली बातें हैं, जो समय के साथ जो बात की जानी चाहिए, उस पर विषय को रखा है। महिलाओं पर तो बात पहले बहुत ज़्यादा होती थी, और 2019 के बाद जो बच्चों की आपने बात की
1: जी,
0: वो पक्स एक्ट के तहत उनमें कड़े प्रावधान भी लागू हुए
1: जी।
0: महिलाओं के सवाल पर पहले जो था, महिलाओं या जो कम उम्र के बच्चे के हैं उनके लिए एक अलग पॉक्सो अब बहुत कड़े फॉर्म में है, और पॉक्सो के साथ साथ वो बीएनएस में जब आ रहा है तो दोनों मिला करके सिर्फ प्रावधान तक सीमित नहीं है
1: जी।
0: इसको कैसे उनको, और सजा देना भी प्रावधान नहीं है, एक रिफॉर्म की बात भी है वहाँ, और लोगों को ये एहसास दिलाने की बात है कि आप ये गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस पर भी कानून ने अपना बहुत ही विस्तृत पैमाने पर फोकस रखा है
1: जी।
0: उस समय जब कोई घटना घटती है या जो भी होते हैं, तो जांच का जो दायरा है वो भी बहुत शॉर्ट हुआ है। पहले था कि वो
1: काफी
0: साल दर साल चल रहा है, अब जांच का है कि आपको 2 महीने में ही उसको जांच पूरी करनी है, 2 महीने में जांच पूरी करनी है, और फाइनल 4 महीने में 2 और महीने एक्सटेंड करके उसकी जो भी उसके निर्णय होंगे वो आपको दे
1: देना, न्यायालय को
0: फाइनल
1: कर देना,
0: 4 महीने में वहाँ फाइनल में पहुंच जाना है। अनलेस अंटिल की बहुत सारी ऐसी की जांच में कोई बहुत बात नहीं आया, जैसे अभी जो हाल फिलहाल में हमारे राज्य में जो घटना घटी है उसमें भी देख रहे हैं हम कि बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है उसमें, और ये सारा कार्रवाई चलेगी और ये अच्छा होगा।
1: सर, आपने बखूबी बता दिया कि कैसे बदलाव हुआ है। एक समय था कि जब सिर्फ 10 साल या साल में सजा दी जाती थी, लेकिन अब फांसी तक बात पहुंच गई है। एक मामला और देखने को मिल रहा है आए दिन कि शादी का झांसा दे करके और जो शारीरिक संबंध बनाते हैं महिलाओं के साथ, जो अत्याचार होता है, तो इसमें बीएनएस के कौन से कैसे प्रावधान है?
0: वो पहले था सेक्शन, अभी 69 है
1: जी।
0: इसमें शादी का झांसा दे करके या जो भी करते थे लोग, इसमें एक चीज और है, शादी का झांसा देना और शादी के झांसा देने में जो व्यक्ति कर रहा है, जो झांसा दे रहा है
1: जी,
0: क्या वो सीधे सीधे जिम्मेवार है? कई बार ऐसे होता है, मान ली कि आप किसी अच्छे ओहदे पे हैं, आपने किसी को झांसा दिया, बाद में शादी नहीं हुई, या हुई नहीं हुई या हुई, दो ही चीज हो सकती है। नहीं हुई तो ये जरूरी नहीं है कि जो झांसा देने वाला व्यक्ति है सीधे सीधे वही जिम्मेवार है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो तो चाहता है लेकिन उसके गार्जियन नहीं चाहते हैं ऐसा, तो ये कोर्ट इस मामले में बिल्कुल निर्णय लेता है कि क्या मुझे देखना है। वो कोर्ट अगर ऐसा पाता है कि नहीं, झांसा देने वाला व्यक्ति सही में झांसा दिया है, तब तो वो गलत है, तब तो उनको सजा के दायरे में आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तब कोर्ट उस पर कोर्ट निर्णय लेगा कि झांसा झांसा है या उसकी मजबूरी है या जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उससे वो बाध्य हो रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो सर अगर कोई सही में साबित हो जाता है कि झांसा दिया है तो उसके लिए किस तरह के पनिशमेंट, सजा का प्रावधान?
0: उसके लिए 10 साल का है
1: जी,
0: 10 साल के प्रावधान उसके लिए है।
1: अच्छा, और कई स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है,
0: 10 साल का प्रावधान है, लेकिन वो अलग अलग है, जैसे एज के हिसाब से भी वो बदलेगा, किस एज के बच्चे को आप ये कर रहे हैं।
1: मतलब एक मोटा मोटी 10 साल है, लेकिन उसके कई और प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो सकते हैं।
0: एज की बात अगर हम करें तो पहले आपको जैसे निर्भया कांड में एक चीज आपको याद होगा, 17 साल का एक व्यक्ति था जो वो माइनर होके अपना पनिशमेंट से छूट गया
1: जी।
0: इसको भी बीएनएस ने चेंज किया है, बीएनएस में वहां भी चेंज हुआ था और यहाँ उसको बहुत सख्ती से किया है। वो 17 साल मतलब ये हार्ड 17 साल हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, 16 से 18 वो भी आएंगे, तो वो जो मैच्योर पर्सन है, जो मेजर पर्सन है, उसी वही प्रावधान उनके लिए भी लागू होगा, प्रोसीजर वही फॉलो होगा।
1: मतलब इस तरह के कुकृत्य में अपराध का जो दायरा है
0: बड़े स्केल पर
1: तो वहां पे एज का रिलैक्सेशन कोई आसानी से नहीं ले सकता है।
0: हाँ, 16 साल का भी होगा तो बहुत आसानी से नहीं ले सकता।
1: क्या बात है। सर, जो पीड़िता होती है, कई मामलों में हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग पहले हम देख ही रहे, टीआरपी का दौर चल रहा है, पहचान उजागर करते हैं, तो ऐसे में डीएनएस किस तरीके से उन पर रोक लगा
0: उन पर पहचान उजागर नहीं करना है। अगर पहचान उजागर करते हैं तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। आपको वो पहचान उजागर नहीं करना है, किसी का भी कोई भी हो उसको पहचान छुपा करके ही। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जो खास करके जो उत्पीड़न या किसी चीज़ का होता है तो उनके लिए पहचान उजागर करना और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी होती है।

0: उस स्थिति में वो कहीं डाइवर्ट न कर जाए या बहुत ज़्यादा ही सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते वो दबाव में ना आ जाए, बहुत तरह
1: एक
0: की
1: ग्लानि
0: परेशानी।
1: के भाव
0: हाँ,
1: से लोग
0: ग्लानि के
1: जीने
0: भाव से
1: लगते
0: भी जीने
1: हैं,
0: लगते हैं वो,
1: मन ही मन
0: मन
1: मरने
0: ही
1: लगते
0: मन,
1: हैं।
0: बहुत
1: जी
0: इसमें ग्लानि के भाव से जीने नहीं लगते हैं, बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
1: जी जी और सर, बच्चों के जो खरीद फरोख्त होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला हम लोग देखते हैं, तो इसको लेकर के BNS कितना सख्त है?
0: बिल्कुल, इसके मामले भी बहुत सख्त है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में जैसे भीख मंगवाने का है,
1: जी
0: तो बहुत बहुत तो ऐसे जो भीख मंगवाते हैं लोग, दो तरह से लोग करते हैं,
1: जी
0: या तो बच्चों को ये पकड़ लिया उन्होंने और करवाया, तो उसके लिए 10 साल है। बहुत मामले में आपने देखा होगा, आप बहुत जगहों पे देखा होगा, स्टेशन पे देखा होगा, एयरपोर्ट, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि बच्चे अपंग हैं।
1: जी
0: वो बेसिकली अपंग होते नहीं हैं, उनको उनका जो बॉस होता है या जो अपहरण करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपंग बना देते हैं,
1: क्या बात।
0: और
1: जी
0: वो उससे अपंग बना करके भीख मंगवाते हैं, जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा हो। वो तो उनकी आमदनी के वजह से चलते हैं। इस मामले में सज़ा सीधा दुगनी, यानी 20 साल की सज़ा होगी। फिर
1: अगर
0: 20 साल
1: ऐसी स्थिति
0: ऐसी
1: है,
0: स्थिति रहे तो, अगर ऐसी स्थिति
1: बच्चे को
0: आती है,
1: अपंग होने के लिए मजबूर
0: अब
1: किया गया और
0: अपंग
1: भीख मंगवाया
0: अपंग
1: जाए।
0: कर देते हैं, आप
1: जी
0: अपंग बना
1: जी
0: देते हैं, हाथ पैर काट
1: अच्छा
0: देते
1: अच्छा
0: हैं, और
1: जी जी
0: तब 20 साल की सज़ा का प्रावधान
1: निश्चित रूप
0: इसमें
1: से। तो हमारे
0: है।
1: श्रोता इस बात को सुन रहे होंगे और समझ भी
0: हम
1: रहे होंगे कि बच्चों के साथ अगर ज्यादती इस तरह की इस लेवल पे हो रही है तो हमारे देश में कितना सख्त कानून है। सर, आपने चर्चा भी किया, अगर किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म के मामले तो हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है प्रावधान?
0: नाबालिग के सामने तो उम्र के हिसाब से अलग अलग है। अगर 7 साल का बच्चा है,
1: हालांकि आपने
0: 12
1: चर्चा
0: साल
1: भी
0: का
1: किया कि इसके
0: है,
1: लिए ऑलरेडी
0: हाँ,
1: पॉक्सो
0: और
1: एक्ट
0: अलग
1: था।
0: अलग अलग है, अभी
1: जी
0: भी है,
1: जी
0: था क्या है 19 में, और सख्त हुआ है BNS के साथ।
1: जी
0: BNS का सेक्शन 93, 94, 96, उधर जो ये करता है, वो पॉक्सो एक्ट को बड़ा कोरिलेट करते हुए करता है, और बच्चों को किसी भी स्थिति में वो नहीं चाहता है, कानून नहीं चाहता है, इवन समाज भी नहीं चाहता है, लेकिन समाज तो बहुत चीज़ नहीं कर पाता है। कानून बहुत बार बनते हैं, लेकिन कानून का पालन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कि कानून का पालन किस ढंग से हो। तो बच्चों के ही मामले में, खास करके BNS के साथ साथ पॉक्सो एक्ट बहुत ही सख्त हुआ है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पर अच्छे काम हो रहे हैं और बेहतरीन काम हो रहे हैं। बच्चों के मामले में एज का कैटेगराइजेशन अलग अलग है, 7 साल, 12 साल, पंद्रह
1: जी
0: साल 18 साल, ऐसे।
1: अच्छा, तो सर अब हम थोड़ी बात करते हैं महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को लेकर के। हम लोग आए दिन देख रहे हैं आजकल स्नैचिंग का जो मामला है काफी बढ़ा हुआ
0: बड़ा
1: है। हम लोग देखते हैं ना कि वो गले से चेन तोड़ के लेके चले जाते हैं, पीछे से आए लोगों का मोबाइल भी स्नैच हो जाता है। किसी महिला का अगर मंगलसूत्र कोई स्नैच कर लेता है तो इसको लेकर के BNS में क्या प्रावधान है? अलग से एक धारा 304 भी शायद ऐड हुआ है, क्या है कुछ इसमें खास?
0: उसमें देखिए, ऐसा है ना कि जब आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं, तो वो महिलाओं के सिर्फ मॉडेस्टी को देख कर नहीं देखा जाता है, बल्कि उनके अस्तित्व पर खतरा उसको
1: जी
0: इस रूप में ले रहा है कि इनके, महिलाओं के जो अस्तित्व है उस पर आप हमला कर रहे हैं। पहले एक सेक्शन IPC में 509 भी था,
1: जी
0: वो जस्ट है कि आपके से इशारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर अपराध के रूप में BNS ने इसको बहुत अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है।
1: हर
0: अब
1: चीज को
0: हर
1: क्लियर
0: चीज
1: कर
0: को
1: दिया।
0: करेक्टराइज कर दिया है। जैसे कानून तो होते हैं भाई, एक होते हैं, एक में जो फ्रेम में बैठते हैं वो बैठते हैं, लेकिन अब BNS ने किया है जो कानून जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, या जिसको दूसरे में मर्ज किया जाता था मर्ज किया है, जिसको वहाँ से हटाना चाहिए था हटाया है, और जिसको अलग अलग कैटेगराइज करके बहुत विस्तृत पैमाने पर उसको किया जाना था, BNS में ये आपको देखने को मिलेगा।
1: मतलब प्रक्रिया भी साफ हो गई
0: प्रक्रिया
1: है,
0: भी साफ हो गई,
1: आसान
0: बिल्कुल
1: हो गई
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: और
0: आसान हुई
1: न्याय
0: है।
1: जल्दी सुनिश्चित हो सके।
0: हाँ, प्रयास जरूर किया गया है।
1: जी जी
0: प्रयास जरूर किया
1: और
0: है।
1: सर, BNS में एक धारा 80 अब दहेज हत्या के लिए है, तो ये पीड़िता को या जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनके जांच प्रक्रिया को और सजा दिलाने को IPC से कैसे BNS अलग कर रहा है?
0: देखिए, पहले था कि जांच
1: क्योंकि
0: प्रक्रिया
1: दहेज हत्या भी एक बर्निंग मामला
0: बहुत
1: है।
0: बहुत
1: जी
0: बहुत दहेज हत्या बहुत बर्निंग मामला है। कई बार आपने इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दहेज हत्या के मामले में भी बहुत जांच करनी चाहिए, अच्छे से जांच करनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा उस समय महिला हिंसा, महिलाओं पर जो हिंसा के थे, तो उसके साथ दहेज हत्या वाले में बड़ा बहुत एक नैरो माइंड रखा है उसने, थोड़ा नैरो माइंड रखा है कि अगर 7 साल के अंदर भी है तो उसको जाँच करके ही हम उसको दहेज हत्या के प्रभु मिलाएं। पहले था कि एक प्रिजम्पशन था, अब प्रिजम्पशन को थोड़ा लिबरल किया है, लेकिन सख्त ये किया है कि थोड़ी भी अगर गुंजाइश उसके फेवर हो जाती है तो इनको दहेज हत्या माना जाएगा, और सजा तो पहले से ही है उसके लिए।
1: सर एसिड अटैक भी एक मामला है
0: बहुत ज्यादा है,
1: इसमें,
0: बहुत ज्यादा
1: तो
0: है।
1: एसिड अटैक को लेकर के भी इसमें सजा का क्या प्रावधान है और जांच की क्या प्रक्रिया?

0: सीट अटैक में बहुत ही सजा का कड़ा प्रावधान है। पहले तो ये प्रावधान ऐसा था भी नहीं, क्योंकि आईपीसी में ऐसी घटनाएं घट नहीं रही थी। इस सीट अटैक के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान दिया गया
1: और
0: है,
1: पीड़ित को अब मुआवजा देने की भी बात की
0: मुआवजा
1: जा रही
0: देने की
1: है।
0: बात की गई है।
1: जी। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि अगर किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध हो जाए तो परिवार को पहले घंटे में कौन से ऐसे 3-4 कदम उठाने चाहिए जो उनके सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए जरूरी है।
0: अगर महिलाओं के साथ या बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले जो जो होना चाहिए वो तो कोई भी इलाज या जो भी घटना घटती है उसका हो। दूसरे, उन्हें निकट के जो थाने हैं या जो भी व्यवस्था है उनको ये सूचित करना चाहिए। सूचित करने के बाद तब देखना चाहिए कि जो नियर डियर जो समाज के लोग हैं उनको ये सूचित करें, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी बताएं, जिससे कि मामले को वो बताएं कि भाई क्या है नहीं है, और घटना से जो संबंधित बातें हैं प्रयास करें कि झूठ सच या इधर उधर न करके जो सही बातें हैं, अगर उनके साथ घटना घटी है तो कानून इसके लिए बड़ा कड़ा प्रावधान करता है। इसमें अगर घटना घटती है तो झूठ ना बोल करके जो सही बातें हैं उन्हें करके भी वो न्याय पा सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सही सुझाव आपने दिया। और BNS में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं और जो सज़ा का प्रावधान है उसको भी विस्तार दिया गया है और प्रक्रिया आसान की गई है ताकि न्याय जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो सके और दिखे भी,
0: दिखे
1: न्याय
0: भी,
1: होता हुआ समझ में आए।
0: समझ में आया।
1: आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आकाशवाणी को आपने बहुमूल्य समय दिया। डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार आपको।
2: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, BNS कितना सख्त। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता कुमार गंगेश गुंजन, भेंटकर्ता हरेंद्र आजाद। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है देशकाल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म सिर्फ तुम का ये गाना। आवाज़ें हैं अमीन साबरी और फरीद साबरी की।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना की टेंट सिटी में आज इकट्ठा हो रहे हैं। वे वहां रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय श्रद्धालुओं को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉ. कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। बिहार विधानमंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पटना के विभिन्न हिस्सों से बस सेवा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के अनुरूप नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विधानसभा

0: अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज विधानमंडल परिसर से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। गया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरपाती इलाके में पूर्व सांसद रंजीत सिंह के आवासीय परिसर में ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदिग्ध दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तहान में बार बार हो रही चूक पर इजहार फिक्र किया है। अदलिया ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि कौमी जांच एजेंसी ने गुज़श्ता पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं सीखा है। जस्टिस P.S. नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने मरकजी हुकूमत, कौमी जांच एजेंसी NTA और मरकजी जांच ब्यूरो से इन मामलात पर जवाब तलब किया है, जिनमें मेडिकल दाखिला इम्तहान मुनक़द करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज़्यादा मजबूत और ख़ुद इन्हिसार इदारे को लाने का मुतालबा किया गया है। अदलिया ने एजेंसी को आइंदा जुमरात तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब के मीना में हज के लिए जमा हो रहे हैं। मक्का से अपना सफ़र शुरू कर रहे आज़मीन मीना की टेंट सिटी में आज जमा हो रहे हैं। वो वहां रात क़याम करेंगे और कल अलसुबह अराफात के मैदान की जानिब जाएंगे, जहां वो हज के अहम अरकान में शिरकत करेंगे। इस साल हज के लिए बिहार के 2552 आज़मीन हज समेत भारत से तकरीबन 175,000 सफ़र हज पर गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने बेहतर, महफूज और आरामदेह सफ़र हज के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए हैं। हज सहूलत मोबाइल ऐप के तवसुत से हिंदुस्तानी आज़मीन को इत्तला और शिकायत दर्ज कराने की सर्विस फराहम की जा रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है। गुज़श्ता दो हफ्ता में तेल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये फी लीटर हो गया है। असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा को आलमी सूरत हाल का नतीजा बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। بہار قانون سازیہ نے اپنے ملازمین اور افسران کے لیے پٹنہ کے مختلف حصوں سے بس خدمات کی شروعات کی ہے۔

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के मद्देनजर नया निजाम शुरू किया गया है। कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज कानून साजिया के कैंपस से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर कुमार ने कहा कि बिहार मुल्क की पहली रियासत है जिसने कानून साजिया के मुलाजमीन के लिए इस तरह की बस खिदमात शुरू की है। रियासत के जुनूबी हिस्सों में सख्त गर्मी और शुमाली हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमे मौसमियात ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत जुनूबी मगरब और जुनूब वस्त खत्ते में लू चलने की तंबीह जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिला में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और दीगर खित्तों में रियासत के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में आंधी बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकाम पर आसमानी बिजली गिर भी सकती है। अररिया ज़िला के रानीगंज थाना हलका के तहत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से दोशीजा की मौत हो गई। नवादा के पुलिस सेंटर के पास गया नवादा रोड पर एक तेज़ रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। गया ज़िला के टाउन थाना हलका के तहत पीपर पाती इलाके में साबिक एमपी रंजीत सिंह के रहायशी क्वार्टर में ड्रग महकमा की और पुलिस की मुश्तरका टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और काबिले एतराज़ दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर

0: लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे और डीजल

95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार

0: भूमध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरु मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरु मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं के श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ।

0: में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 3।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं।

0: की जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।
2: हाँ,

0: कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हथगोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
7: ये क्या हुआ?
6: अरे
7: बच्चों,
6: फटने
7: जा रहा है।
6: निकल जाओ,
7: धुआं
6: निकल रहा है।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: मे आई कम इन सर?
4: यस, कम इन।
9: सर,
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर।

0: सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ कहो।
0: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
0: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
0: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि ना पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
4: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
5: जी जनाब।
6: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
4: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
4: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
4: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
4: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
4: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के

0: नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एक धुन लगाई थी आजकल, पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।
2: हाँ।
1: ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी,
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है
1: जी।
2: और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है
1: जी।
2: और विधि, इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं
2: जी। हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल। आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी,
2: जो एक
1: बिल्कुल
2: गीत भी होते हैं
1: जी,
2: लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: बिल्कुल मीठा ही होता है ये,
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं

0: उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो
1: अच्छा
0: लाए हैं वो
1: जी,
0: है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी

0: रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण,
3: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा?

0: आप ही बताइए, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
1: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
2: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण
0: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना। अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
2: क्या जाए हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
3: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
0: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
1: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
2: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
0: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
2: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
1: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
2: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है। हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
0: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
2: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
0: अरे बाप रे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
2: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
1: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
2: रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
0: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
2: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
0: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
2: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
0: अच्छा।
2: और 21

0: दिन तक दोनों वक्त पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से पांच ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण।
2: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी,
1: हाँ?
4: जी तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
2: अरे हुआ का,
4: अरे बता का बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी।
1: हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पे ले आएं, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें, और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है
0: से छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
3: और वो भी भाग गए
2: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं
3: बिल्कुल।
2: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ,
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब
0: देखो
1: तो मान
0: रूठा
1: ही
0: ना
1: गए
0: करो, अब तक
1: होंगे
0: मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,

0: नादिया देख
1: आपको
0: तो रूखा
1: मान ही
0: ना
1: गए
0: करो,
1: होंगे
0: अब तक मान गए होंगे,
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और
1: हाँ।
0: फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय हैं सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो
1: बिल्कुल।
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी
1: बढ़ती
0: हाइट
1: है।
0: भी इससे बढ़ती है।
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है, क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है, क्योंकि पूरा
0: बिल्कुल।
1: उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है। जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
1: अच्छा।
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे
1: इस
0: अपने
1: खेल
0: घर
1: की
0: में।
1: कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलें इसे।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने
0: इतनी
1: में स्ट्रेंथ।
0: कैलोरीज यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: खत्म कर दी जाएंगी। जी
1: जी।
0: बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात है।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर
1: बिल्कुल,
0: झुकाकर जीत स्वीकार
1: कहते ना,
0: करो और
1: जिस
0: हार
1: पेड़
0: जाओ।
1: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता
0: हाँ
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: जिस
0: सही
1: पे
0: बात
1: कुछ
0: है
1: नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी, बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है ये।
0: बहुत बढ़िया चीज़ है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती
1: बिल्कुल
0: को सच में में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके

0: पैरों की ताकत
1: बिल्कुल
0: बढ़ेगी
1: बढ़ेगी।
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है,
1: जी
0: अगले किस दोस्त को
1: हाँ
0: पास करना है। शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी
1: बिल्कुल,
0: बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जो जब हम बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक
0: जी
1: पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा।
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो जब
1: होता
0: संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं,
1: है।
0: इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है।
1: हाँ
0: तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है।
1: जी
0: टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर
1: बिल्कुल
0: रहे
1: सही
0: होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने जाना
1: जाना
0: है।
1: है। ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला
1: बिल्कुल।
0: जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों
1: बिल्कुल।
0: के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती,
1: बिल्कुल,
0: बड़ा अच्छा
1: लगता है कि
0: लगता
1: ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और
0: है।
1: जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना, वो एक अलग होता है जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे
0: हाँ,
1: होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी
1: हाँ
0: खुशबू
1: बिल्कुल
0: हमारे तक आ जाती
1: जी
0: है।
1: हाँ। और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए हैं।
0: जी बिल्कुल, और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता
1: बहुत
0: है। और
1: अच्छा।
0: इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे
1: जी
0: होते हैं
1: हाँ।
0: तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: जो भी जा रहा है, हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत
0: लेके
1: ज़रूरी है।
0: चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है,
1: क्या
0: वो होता है टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम।
0: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप
1: सच
0: जहाँ
1: में।
0: जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतः जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं, और
1: हाँ
0: सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है,
1: अच्छा।
0: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं। तो
1: बिल्कुल।
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम
1: हाँ।
0: सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ बताई है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ऐसा करना भी चाहिए।
0: जी
1: और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो
0: जी
1: कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े
0: बिल्कुल
1: होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो
0: हाँ, और
1: थोड़ा सा
0: अगर
1: ध्यान रखना
0: पहन भी
1: चाहिए।
0: रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए,
1: जी
0: यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार
1: हाँ।
0: के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े

0: बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे
1: हाँ
0: हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए,
1: बिल्कुल ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये दो चीज़ें
1: जरूर।
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सपरिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।

0: ने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ, बड़ा
1: अच्छा,
0: आनंद आता है।
1: सच में अच्छा लगता होगा, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल
0: जी
1: जाता है ना, तो बहुत बहुत
0: बहुत
1: स्वाद आ जाता है।
0: आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं पे
1: अरे
0: आया
1: बिल्कुल
0: है, मज़ा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं, तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो
1: अच्छा
0: घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए।
1: अच्छा
0: मोयन डालते समय मोयन
1: हाँ
0: डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद हल्के विशेष तरीके से उसे तला जाता है। और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे
0: और
1: वाह।
0: अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है। जो मैंने कहा, मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो और वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए, और इसे मध्यम आँच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए, और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना
1: बहुत
0: खाने
1: अच्छा
0: के लिए,
1: लगेगा।
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में
1: सच में
0: सूदिंग सूदिंग
1: बाहर की
0: लगेगा।
1: आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है, ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं, अरिस्तान
1: बिल्कुल।
0: के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत।
0: जी।
2: वो हम न थे

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है,
0: हाँ
1: कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में
0: गले में
1: डाल
0: जरूर
1: दीजिए,
0: टांग दें। हाँ
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक और श्रोता लिखती है, आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है,
1: हाँ विधि है।
0: वी विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत
0: है, ऐसे
1: बहुत
0: ही
1: अच्छी
0: तैयारी
1: बात है।
0: करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी
1: बिल्कुल,
0: खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए।
1: सुनते
0: तो
1: रहिए।
0: आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा
1: अब
0: दीजिए,
1: बिल्कुल,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स, जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथि होती है,
1: वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं, ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे

0: आपको स्वयं को नहीं पता है, तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब? हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है ऐसे? चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा, तो
1: अच्छा
0: ऐसा नहीं है। डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए।
1: याराना फिल्म का गाना है,
0: याराना
1: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है,
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हों।
1: हाँ मेरे पास ज़्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
0: जी
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
1: हाँ
0: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है? तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
1: हाँ
0: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या-क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार

0: एक हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया, बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
1: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
0: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
1: निदान।
0: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3, T4, TSH का
1: जी।
0: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3, T4, एक होता है फ्री T3, T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3, T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3, T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3, T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा,
0: फ्री T3, फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
1: अच्छा,
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
0: पॉजिटिव
1: जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ, रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी, जी जी,
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।
2: खोया खोया चांद, खुला आसमान,

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई दे के छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज़ में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफ़ी टाइम

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोता, हमारे नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक हम आपके साथ बने रहेंगे। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवा श्रोताओं को संबोधित युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और शुरू होता है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी दोस्त ईशा।
1: और मैं हूं करिश्मा। और हम दोनों आपका दिल से स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से सफर में। अब हम आपके साथ हैं बातों में, एहसासों में और कुछ खास सोच के साथ।
0: वैसे करिश्मा, मुझे लगता है ना कि दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर कुछ अच्छे लोग और अच्छी बातें साथ मिल जाए ना, तो सब कुछ एकदम आसान सा लगने लगता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने ईशा। और शायद इसी वजह से हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जब भी श्रोता हमारे साथ जुड़े तो उन्हें सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि अपनापन भी महसूस हो।
0: बिल्कुल करिश्मा, और आज का कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां खेल का जुनून भी होगा और इतिहास के पन्नों से जुड़ी प्रेरणादायक बातें भी होंगी।
1: तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फुटबॉल डे की, उस खेल की जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपना पैशन मानते हैं।
0: सच में करिश्मा, फुटबॉल ऐसा खेल है जहां मैदान में सिर्फ खिलाड़ी नहीं दौड़ते बल्कि लोगों की भावनाएं और उत्साह भी उनके साथ दौड़ने लगते हैं।
1: और साथ ही याद करेंगे महान क्रांतिकारी राज बेहरी बोस को, जिनका जीवन साहस, संघर्ष और देश प्रेम की ऐसी मिसाल है जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है।
0: इसके अलावा और भी बहुत कुछ होंगे श्रोताओं कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक गाना फिल्म रेस से आतिफ असलम की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना ये बहुत ही प्यारा सा गीत और हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम सुनेंगे एक प्रेरक पंक्ति। क्यों ईशा, हमारे युवाओं को सुनाएंगे आप?
1: बिल्कुल करिश्मा, क्यों नहीं। तो श्रोताओं, आज की प्रेरक पंक्ति है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये प्रेरक पंक्ति हमें मिली है APJ अब्दुल कलाम जी से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, अभी हमने सुना फिल्म इकबाल से ये गाना के और सलीम मर्चेंट की आवाज में। अब आइए बढ़ते कार्यक्रम में आगे की ओर।
1: आज 25 मई है, इतिहास के पन्नों में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज भारत माता के उस वीर सपूत का जन्मदिन है जिसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि सरहदों के पार सीधे जापान की धरती से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। उस महान क्रांतिकारी ने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
0: दोस्तों, जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम अक्सर सुनाई देते हैं, पर ये एक ऐसा नाम है जो आपको अक्सर कम ही सुनाई देते होंगे। हम बात कर रहे हैं राजबिहारी बोस की। आज उनकी 140वीं जयंती है। उनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबालदाह गांव में हुआ था।
1: बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई चंदन नगर के डुप्लेक्स कॉलेज में हुई, जो उस समय फ्रांसीसी शासन के अधीन था, जहां उन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पर आधारित था। उस क्रांति के विचारों ने उनके बाल मन पर ऐसा असर डाला कि वो बचपन से ही आजादी के सपने देखने लगे।
0: सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस से पहले मिली थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। जब नेताजी जापान पहुंचे तो राजबिहारी बोस ने बिना किसी अहंकार के खुशी खुशी आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कामना नेताजी के हाथों में सौंप दी। उन्होंने कहा था, मुझे एक सेनापति मिल गया है।
1: जापान की सरकार ने भी उन्हें इस अदम्य साहस और योगदान को सलाम किया और उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा।
0: 21 जनवरी 1945 को भारत की आजादी देखने से ठीक 2 साल पहले टोक्यो में इस महान नायक ने अंतिम सांस ली। भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी जयंती पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके इस बलिदान और विजय को याद रखें।
1: तो दोस्तों, राजबिहारी बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, यह सिखाने का कि अगर इरादे मजबूत हो तो 7 समंदर पार बैठकर भी इतिहास बदला जा सकता है। हमारी

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना फिल्म अंदाज से किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक। और दोस्तों, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, क्यों ईशा?
1: बिल्कुल करिश्मा,
0: और छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम तक हर जगह फुटबॉल का क्रेज देखने को मिलता है।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है फुटबॉल।
0: अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक हमने फुटबॉल की चर्चा क्यों की, तो दोस्तों आज हम मना रहे हैं विश्व फुटबॉल दिवस, यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल डे।
1: फुटबॉल मतलब वो खेल जिसे देखते ही अच्छे भले शांत लोग भी सोफे पर उछलने लग जाते हैं और टीवी स्क्रीन के सामने रेफरी बन जाते हैं। लेकिन इस विश्व फुटबॉल दिवस की शुरुआत कैसे हुई करिश्मा?
0: दरअसल यूनाइटेड नेशन यूएन ने मई 2024 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव करके 25 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया था। और मई 25 ही क्यों?
1: ठीक 102 साल पहले यानी 25 मई 1924 को पेरिस समर ओलंपिक के दौरान इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। इसी को याद रखने के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने यह दिन चुना है।
0: तो श्रोताओं, बातें तो होते रहेंगी, पर अभी हम आपसे एक और बात शेयर करेंगे, जो है कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही है ना ईशा, 19 मई को यूएन जनरल असेंबली में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 को एक बेहद एनर्जेटिक सेलिब्रेशन हुआ है।
1: बिल्कुल करिश्मा, इसमें बहरीन, लीबिया और तजाकिस्तान जैसे देशों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ यूएन ने नॉर्थ लॉन में एक छोटा सा मिनी टूर्नामेंट भी खेला गया।

0: जहां डिप्लोमेट सूट बूट छोड़कर जर्सी में गोल करते नजर आए।
1: तो सोचिए, जिन देशों के बीच टेबल पर गंभीर बहस होती है, उनके प्रतिनिधि मैदान पर एक दूसरे को पास दे रहे थे। यही तो है इस खेल की असली ताकत। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। शायद इसी वजह से इसे द ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल करिश्मा, इस बार फीफा ने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि वर्ल्ड फुटबॉल वीक की शुरुआत की है, जो 21 मई से यानी आज 25 मई तक चल रहा है। इसके तहत पूरी दुनिया में लोगों को सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं बल्कि खुद मैदान पर उतरकर खेलने और एक्टिव रहने के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: श्रोताओं, अभी हमने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। गाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे फुटबॉल डे के बारे में। आगे बताइए करिश्मा, फुटबॉल डे के बारे में।
1: फिलहाल तो मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, और हार हो या जीत हो, ये हमें सिखाता है कि एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम किया जाए। क्यों ईशा?
0: बिल्कुल करिश्मा, ये हमें अनुशासन, एकता और मेहनत का पाठ पढ़ाती है। 2026 का यह विश्व फुटबॉल दिवस चुनौतियों के बीच भी उम्मीद की किरण है।
1: साथ ही यह विश्व फुटबॉल दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि कल यानी 26 मई को दुनिया में पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल गिविंग डे भी मनाने जा रही है। ये भी एक नई पहल है और इसकी शुरुआत कॉमन गोल नाम की संस्था ने की है।
0: तो दोस्तों, चाहे आप मेसी के फैन हो, रोनाल्डो के दीवाने हो या फिर एम्बानवे के मुरीदा, आपका दिन हम सबका है।
1: क्योंकि फुटबॉल सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से खेला जाता है, और यह खेल सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि दिल को जोड़ता है।
0: तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला गाना।

0: अभी हमने सुना फिल्म दिलवाले से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम को अब यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें, नए अंदाज और ढेर सारी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके दोस्त ईशा और
1: करिश्मा को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी श्रोता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह 1 का राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 एंड ही वाज नोन फॉर हिज इमोशनल बॉन्ड विद हिज कॉन्स्टिट्यूएंट।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.

0: पद्म भूषण शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कला अवधान।
1: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
0: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
1: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
0: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
1: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक has played an important role in defining and developing India's banking and financial sector over 4 decades and he leads several key bodies serving as co-chairman of the Indo-UK Financial
0: Partnership। विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
1: बीती 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते
2: हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा सर्व्ड ओवर 40 इयर्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
0: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines।
0: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
1: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
0: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्व बंधु वाज अ फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
0: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
1: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरु जी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। ही हैज आल्सो गाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स एज अ जज एंड मेंटर।
0: श्री तगाराम भील कला अलगोजा वादन।
1: जैसलमेर के तगाराम भील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुनरी का।
2: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
0: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।

0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
2: Shri Kumar Bose. कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
2: Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं, और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant Padma Shri se sammanit hota hua.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं, और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है, और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है, और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं, लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है, और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट। She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: People,
2: Dr. Ramchand Godbole, evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.

0: डॉक्टर रामचंद्र गुड़ बोले और उनके साथ सुनीता गुड़ बोले, आप एक
1: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गोबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गोबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गोविंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। ही आल्सो लेड अ टीम ऑफ डेलीगेशंस टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट
1: डॉक्टर एच वी हांडे, चिकित्सा।
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
2: B.P. Roy
1: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: Well, through his sustained artistic practice, Shri Gafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies in
1: folk. Shri Mir Hazi Kasam, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। ही हैज आल्सो रिसीव्ड मेनी स्टेट लेवल ऑनर्स including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
2: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना।

0: आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: वेल प्रोफेसर मामेदला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
2: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: और अब बारी इस वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी
2: देवबा लाड़ दादा लाड़ कृषि।
0: देवालाल किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्री रंग देवालाल इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
2: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
1: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज। And his collection includes books in Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu, and several other Indian languages, and diverse subjects such as literature, history, art, culture, and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
0: 69-year-old Dr. Mandal, interventional cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला ही हैज अ लॉन्ग टर्म विजन दैट बाय 2047 नो सिटीजन शुड लूज लाइफ बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन। फॉर दैट ही हैज ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया।
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस हानयांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया थाईलैंड महिडोल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज अकेडमी ऑफ साइंसेज।
2: श्रीमती तृप्ति

0: पर जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगाश्री अवार्ड।
0: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाफ पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which was
0: Shri K. Pajanivel, Khel Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youth who were interested in Silambam.
0: Shri Dharnik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshar.
1: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtr ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीड़ी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। ही हैज वर्कड ऑन 35 रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड सुपरवाइज्ड 185 एमडीएमएस एंड डीएम।
0: डॉक्टर गुंडुरु वेंकट राव, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्ष

0: वेंकटराव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
2: श्रीमती दीपिका रेड्डी कला नृत्य
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CNE lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: Shri Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म सत्रीय डांस बिफोर इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर and second president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Also he performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
2: Professor Vempati Kutumb Shastri
0: 86 saal ke shastri ji
2: sahitya evam shiksha
0: vidwanon mein se hain. Aapne advait vedant darshan aur sanskrit kavya shastra mein bahut sare karya kiye hain. Namaskar karte hue abhivadan karte hue अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। ही हैज आल्सो गाइडेड न्यूमरस डॉक्टरल स्कॉलर्स एंड डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स।
2: प्रोफेसर शफी शौक साहित्य एवं शिक्षा
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच।
0: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
1: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाज मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी।
2: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 PhD एंड 5 MSc स्टूडेंट्स

0: making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
1: Shrimati Shiv Shankari, Sahitya Evam Shiksha.
2: Abari Shrimati Shiv Shankari Ji Ki, Aap 1942 Mein Janmi Hai, Aur Chennai Mein Inhone Bahut Kari Kiya Hai, Aur Khas Aur Par Lekhan Mein, Sabhi Bhashaon Mein, Khas Aur Tamil Mein, Bahut Sara Inhone Likha Hai, 30 Se Zyada Upanyas, 40 Se Zyada Laghu Upanyas, 100 Se Zyada Laghu Kathaen, 16 Yatra Vritant,
0: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था विज्ञान सीरियल
0: डॉक्टर श्रीधर इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manak professor hain. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लेशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लेशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: Shri N. Swaminathan, Kala Bhakti Sangeet.
2: Tanjavur se aate hain aur Tamil Sangeet ke kshetra ke pratishthit kalakar hain aur aapne Tamil bhasha mein Bhagwan Shiv ke bhajanon ka paramparik ek pramanik bhajan sangrah bhi nikala hai.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shali Chikitsak hain. Aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत

0: विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
1: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
2: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
0: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
1: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
2: श्री वैद्य
1: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
2: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
0: Professor
2: very adaptable.
0: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
1: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशन। He has published about 200 papers in leading journals.
0: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
1: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
2: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in
0: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
1: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस।
0: श्री हैली वार, समाज सेवा।
1: अब बारी हैली वार जी की, आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
2: श्री वार हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5:54 हुए हैं, श्रोता सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती।
1: आरती सुनने वाला हमारे सबन सुनने लुगिन की राउर विनीता के प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर उसे हम राउर ये अपन मनपसंद कार्यक्रम आरती के लेके आयल बनी और आज हो वैसी जानकारी भरल बात के जो ही सुनवाई रोगा सब है कि हम नीक एगो गीत। लेकिन उस सबन से पहले बात करी हम आज के तारीख पर, आज है 25 मई और आज हुए के दिन हमने के पूरा विश्व में विश्व फुटबॉल दिवस मनावल जाला। एक आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 मई 2024 के सर्वसम्मति से पारित कैलक। इस दिन के मनावे के खास उद्देश्य फुटबॉल खेल के वैश्विक लोकप्रियता, शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ावा देल है। तो चलिए यही के साथ है सबसे पहले हम लोग आके पहल का गीत के सुनवाई।

बहुत निमन गीत रहला। आ देखी आज के दिन जौन जेठ के ही महीना चला तनु, यही महीना के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के हर बरिस गंगा दशहरा मनावल जाला। ई परब माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आवे के खुशी आ उनकर पूजा खातिर मनावल जाला। लेकिन अब की बरस कैलेंडर के तारीख के हिसाब से ई पावन पर्व आज हुए बतावल गई बा, लेकिन पंचांग के हिसाब से उदय तिथि के अनुसार अगर देखल जाओ तो ई पर्व काल मनावल जाए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ अपन पूर्वज लोगिन के मोक्ष दियावे खातिर कठोर तपस्या कैले रहन आ उहे तपस्या से खुश होके गंगा मैया स्वर्ग से धरती पायल रही। लेकिन उनकर भारी वेग के संभाले खातिर भोला बाबा भगवान शंकर अपन जटा में धारण कैलन, जेकरा बाद उ पृथ्वी पर प्रवाहित भइली। मान्यता बा कि एह दिन गंगा नदी में नहाय से उनकर पूजा करे से सबन पाप के नाश होला आ मोक्ष के प्राप्ति भेटाला। तरुआ सभी भी गंगा दशहरा के पावन अवसर पर भरपूर पूजा पाठ आ दान पुण्य करें। आई अब एक साथे एगो लोकगीत हम सुनवाई रुआ सभी के।

वाह, इहो गीत इनकर निमन लागल हो, लेकिन समय के कमी के कारण माफ करी हम रउआ सभी के ई पूरा गीत ना सुना पौनी। तो सत्येंद्र कुमार जी के नी गीत खातिर बहुत धन्यवाद बा। आ जैसन कि हम हमेशा अपन भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल कुछ बात साझा करेला, तो वैसे ही आजो हम बतावल चाहम एगो शब्द इहे मौसम से जुड़ल। आज हम इन सभन आम के शरबत के आम पन्ना के नाम से जाने लागल बानी, लेकिन इहे शब्द के हमनिन के गांव देहात में दादी नानी अमझोरा कहत रही। कांच आम के आगी में पका के चाहे पानी में बाफ के ओकर गुद्दा से शरबत बनावल जात रहे। आ उ शरबत ई लू लहर के दिन में बड़ी फायदा करत रहे। यहाँ तक कि लहर लाग गईला के बाद ओह पकावल आम के गुद्दा के पेट पर चाहे तरवा तरहत्थी में लगैला पर ओकर लेप छोड़ल जात।

जो उनके देह के सौ से लहर खींच लेते रहे। तो ई रहे आज के हमने के भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल एगो रोचक बात। ऐसने निमन बात से लेके हम फेरू से राउर ये अपन कार्यक्रम में लेके आए आ ये के साथ हमार जाए के बेरा भ गई। तो यह मंगल कामना के जोरे के रुआ सबन सुनिहार लोग अपन परिवार के संगे स्वस्थ सानंद रही। अब हमार मन राउर विनीता के निहोरा बा कि हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

भोजपुरी कार्यक्रम आरती अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन होगा और उसके बाद 6:10 पर फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे। 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार। छह बजकर 30 मिनट पर ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल होगा और चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की शाम ठीक 7 बजे। बजकर 30 मिनट पर प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा, जिले की हलचल सुनेंगे 7:47 पर। साथ 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम है, नंदिता चक्रवर्ती की गाई गजल हम आपको सुनवाएंगे। 8:00 कार्यक्रम में चंद्रकांत पाठक के गाए कुछ भजन हम आज आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। समाचार संध्या 9:00 News@9, 9:15 पर उर्दू में खबरें प्रसारित होंगी। रात्रि 9:30 का समय है पब्लिक स्पीक का, इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। आज सोमवार है, सोमवार श्रीय संगीत सभा के आज के कार्यक्रम में डॉक्टर नीरा चौधरी का ख्याल गायन सुनिएगा राग रागेश्वरी, रात्रि 10:00। दस बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, पुराने फिल्मी नगमे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे। ये थे हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने को हैं, थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे।

0: विवाद से कोनो सबक नहीं खेलेले। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे के पीठ केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से याचिका पर जवाब मांगले बा, जैसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा करावे खातिर जांच एजेंसी के जगह कोनो ढेर मजबूत संस्था के लियावे के मांग कल गई बा। कोर्ट एजेंसी के बीएफए तक हलफनामा दाखिल करे के निर्देश देले बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज राष्ट्रपति भवन में बिहार के तीन गो विभूति के पद्म पुरस्कार देहल गई। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और डोमकच नाच के मुख्य धारा में लियावे वाला विश्व बंधु जी के मरला के बाद पद्मश्री से सम्मानित कल गई। वही जा भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला के क्षेत्र में उनका शानदार योगदान खातिर पद्मश्री दहल गई। गोपाल जी त्रिवेदी के बेटा रमन कुमार त्रिवेदी इनकर पुरस्कार लेलन। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेके माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा के मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दे दहल गई बा। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दहलन। उ बतौलन कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ए संबंध में चिट्ठी भेजले बाड़ेन। सांसद बतौलें कि सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2027 से अपना पाठ्यक्रम खातिर मैथिली में शामिल कर लेले बा। नया पाठ्यक्रम सीबीएसई के वेबसाइट पर भी उपलब्ध बा। चिट्ठी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिश के आधार पर कक्षा एक से लेके माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली के पढ़ाई के माध्यम बनावल जाय। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मैथिली के मातृभाषा के रूप में मान्यता देवे खातिर केंद्र सरकार के ई पहल के स्वागत कैले बड़े। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहले कि ई गौरव के बात बा, एकरा से मिथिला के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली के शिक्षा व्यवस्था में एगो मजबूत स्थान मिली। मुख्यमंत्री श्री चौधरी कहले कि सीबीएसई के यह फैसला से मिथिला के सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव और बढ़ी। भारत के तेल कंपनियन संघ द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ती कल गई बा। पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल 2.71 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गई बा। पिछला दो हफ्ता में तेल के दाम में ई चौथा बार बढ़ती कल बा। पटना में अब पेट्रोल 113.35 रुपया और डीजल 99.36 रुपया प्रति लीटर हो गई बा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार पेट्रोल और डीजल के दाम में भइल बढ़ोतरी के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के नतीजा बतौले हैं। डॉक्टर कुमार कहले कि सरकार स्थिति पर नजर रखले बिया और जल्दी एकरा पर काबू पा लेहल जाय। वह लोग से तेल बचावे के अपील कैले हैं। सालाना हज यात्रा खातिर भारत समेत दुनिया भर से लाखन जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहल बाड़े। पवित्र शहर मक्का से अपन यात्रा शुरू कर रहल जायरीन लोग आज मीना के टेंट सिटी में जुट रहल बा। लोग उ लोग वही जा रात बिताई और काल भोरे अराफात के मैदान की ओर बढ़ी, जहां उ लोग हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग ली। यह साल हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री और देश भर के करीब 1,75,000 यात्री भाग ले रहल बने। केंद्र सरकार सुचारू सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा पक्का करे खातिर बड़ पैमाना पर इंतजाम कैले बिया। हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए भारतीय श्रद्धालुओं के जानकारी और शिकायत दर्ज करावे के सुविधा देहल गइल बा। बिहार विधान मंडल द्वारा अपना कर्मचारी और अधिकारियों खातिर पटना के अलग अलग हिस्सन से बस सेवा शुरू कैल गइल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल बचावे के अपील के मुताबिक ई नया व्यवस्था शुरू कैल गइल हा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार आज विधान मंडल परिसर से बस के हरा झंडी दिखा के रवाना कैले। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संकेत। फिल्म संघर्ष में सुनिए सोनू निगम को।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ लोग आशुतोष से भोजपुरी में समाचार सुनी। सर्वोच्च न्यायालय नेट परीक्षा में बार बार हो रहल गड़बड़ी पर चिंता जतौले बा। अदालत कहलस कि ई बहुते दुख के बाद बाकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी पिछला पेपर लीक

सोनू निगम को अभी आपने सुना फिल्म संघर्ष में, समीर की रचना थी, जतिन ललित का संगीत। इन्हीं के संगीत में अगला गीत हम सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। समीर की रचना है फिल्म वास्तव के लिए।

वास्तव में अभी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को सुना, समीर की रचना थी, जतिन ललित का संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु

0: प्रणाम शोभा दीदी।
1: निमिषा बहन, आपको भी नमस्कार।
0: हाँ
1: और
0: दीदी,
1: निमिषा बताइए, क्या हाल चाल है?
0: हाल चाल एकदम निमन है दीदी और एकदम स्वस्थ है। कहे कि आज क्या हमने के जो स्वस्थ रहला देखा है ना। अच्छा मौसम तो ना कह सके, क्या कि मौसम में बहुत गर्मी है और हमने के गर्मी में भी स्वस्थ रहला तो देखा। शाम में थोड़ा व्यायाम करी, थोड़ा खेल कूद करी, थोड़ा सुबह में टहली कूदी
1: तभी
0: तो।
1: स्वस्थ रह सकती हैं।
0: हाँ
1: लेकिन खेल कूद की आपने बात कही तो आजकल कहाँ, अगर बच्चों को देखिए तो कहाँ वो खेलते हुए नजर आते हैं। आजकल तो छोटे बच्चे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ही गेम खेलते नजर आते हैं। ये
0: हाँ
1: जो
0: ये
1: हमारे
0: तो
1: यहाँ
0: है।
1: इतने सारे जो खेल हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, टेबल टेनिस, कहीं ना कहीं ये खेल आजकल आसपास देखने को कहाँ मिल रहा
0: हाँ
1: है।
0: ये तो बात सही कहला दीदी। आजकल रील्स बनाने में और मोबाइल के आगे पीछे करे में लोग जुटे
1: हाँ,
0: हैं
1: लेकिन
0: तो।
1: एक समय था कि जब हम अगर बात करें खेलकूद की, तो फुटबॉल,
0: हाँ
1: क्रिकेट, क्रिकेट का तो आज भी लोग क्रेज है।
0: हाँ
1: अगर मैच रहता है तो लोग जरूर मैच देखने के लिए पूरे परिवार के साथ तैयार बैठ जाते हैं। लेकिन खुद जिस खेल में, कौन से खेल में अगर वो शामिल हो, तो ये सब चीज की कमी आजकल दिखाई दे रही है।
0: दीदी जैसे क्रिकेट तो हमने के भारत के लोग के पसंद है, लेकिन
1: हाँ,
0: फुटबॉल के बात करें तो ये विश्व चहेता खेल है। हाँ
1: बिल्कुल,
0: जेकरा के सॉकर भी कहल जाए है।
1: एकदम।
0: और ये फुटबॉल के जैसे खेल के बात करें तो देखा में देखा रक्त संचार बढ़े हुए हैं बढ़िया। हमने के सही के हड्डी मजबूत होवे है, मांसपेशी में मजबूती आवे है। कहा कि 90 मिनट के खेल में देखा सही एकदम एकदम फुर्तीला रहे है, हमेशा मतलब कहा जाए एक्टिव रहे है
1: एक्टिव, बिल्कुल। और
0: तो।
1: आज हम लोग फुटबॉल की बात क्यों कर रहे हैं निमिषा बहन?
0: हाँ एकदम ये तो जाने के चाहिए, काहे कि आज हमने के विश्व फुटबॉल दिवस है।
1: हाँ, और फुटबॉल जो है, जैसा कि आपने कहा कि विश्व भर के लोग इसे
0: हाँ
1: बहुत पसंद करते हैं और सबसे लोकप्रिय खेल ये माना जाता है। और ये केवल एक खेल नहीं, बल्कि ये
0: हाँ
1: उत्साह, अनुशासन और टीम भावना और विश्व एकता का प्रतीक भी है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: और हर साल 25 मई के मनावल जाए के कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल और ओलंपिक आदर्श के माध्यम से ये एगो शांतिपूर्ण दुनिया के बनावे है। और ई दिवस उ तारीख के घोषित करे है जो 1924 में पेरिस हो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सभी क्षेत्र के भागीदारी वालन पहल का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के याद दिलावे है।
1: बिल्कुल। और ये दिवस जो है, फुटबॉल खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, खेल भावना को प्रोत्साहित करने और विश्व भर के फुटबॉल प्रेमियों को एक मंच पर
0: एक
1: जोड़ने के उद्देश्य से
0: एकदम
1: मनाया जाता
0: कहे
1: है।
0: कि ई खेल सीमाओं से परे, धर्म से परे,
1: एकदम,
0: संस्कृति से परे, दुनिया भर के लोगों के एकजुट कर जाए।
1: एकदम। और ये दिन खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने तथा फुटबॉल के महत्व को समझाने के लिए भी समर्पित है।
0: हाँ देखा ई खेल जो हवे है जो ई लेकर में अपनापन लगा बनावे है। ई खेल से लोग जब जुड़ जाते हैं तो हृदय के स्वास्थ्य भी बढ़ सके, सहन शक्ति आवे है, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में ई सुधार लावे है।
1: बिल्कुल। और अगर फुटबॉल के इतिहास की बात करें निमिषा बहन, तो फुटबॉल
0: हाँ
1: का प्रारंभ प्राचीन काल में विभिन्न देशों में से अलग-अलग रूपों में हुआ,
0: अच्छा
1: लेकिन आधुनिक फुटबॉल की जो शुरुआत हुई इंग्लैंड से मानी जाती है। धीरे-धीरे ये खेल जो है पूरे विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। आज फुटबॉल का जो संचालन FIFA यानी फीफा द्वारा किया जाता है,
0: हाँ
1: जो विश्व स्तर की जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उसका ही फीफा जो है आयोजन करता है।
0: हाँ आ देखिए दीदी, फुटबॉल खाली एगो खेल ना है बल्कि विशाल उद्योग भी है। ये दुनिया के वाणिज्य, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के भी प्रभावित करे है।
1: बिल्कुल।
0: और आज के दिवस खेल उद्योग से जुड़े लोगन के जैसे कि खिलाड़ी होलथिन, रेफरी होलथिन, आयोजक होलथिन, इन लोगन के कड़ी मेहनत और समर्पण के याद दिलावे है और उनका
1: एकदम
0: जश्न मनावे के दिन होवे है।
1: एकदम सही बात है। और आपने बात कही कि जो भी लोग इस खेल से जुड़े हुए हैं, ऐसे कई
0: हाँ
1: ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विश्व भर में खेल, इस खेल को खेलकर अपना नाम अर्जित किया है, जिसमें अगर आपने सुना होगा नाम, पेले का नाम,
0: हाँ
1: हाँ, लियोनेल मेसी का नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम, तो ये सब ऐसे महान खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से करोड़ों
0: हाँ
1: जो खेल प्रेमी रहे हैं उनके

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: दिलों में अपनी जगह
1: घर बना
0: बनाई
1: लिए
0: है।
1: हैं एकदम।
0: तो फुटबॉल जो है टीम भावना का खेल है, ये
1: हाँ
0: शारीरिक क्षमता और मानसिक संतुलन को मजबूत बनाता है। इसमें अनुशासन, धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होती है और ये विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर जोड़ता
1: लगता
0: है।
1: है। और दीदी आज के दिन एक बात ला और खास है,
0: अच्छा
1: कहे कि आज के दिन बड़ा पवित्र है कहाँ, और हमने के पवित्र नदी के याद दिलावे है हमने के
0: एकदम
1: भारतीय संस्कृति और जीवन में, जे हमने के गंगा नदी के महत्व वो अद्वितीय है।
0: आज गंगा
1: हाँ
0: दशहरा है
1: एकदम
0: ना।
1: यार, ये देखा दीदी, ये खाली जल धारा नहीं है बल्कि भारत के आस्था, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के मूलाधार है, जे करोड़ निगन के लोगन के जीवन के मोक्ष प्रदान भी करे है।
0: सही बात है। और अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें जो हमारे लिए जो नदियों का जो जल जो है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: केवल जल का स्रोत नहीं हम मानते हैं, बल्कि जीवनदायिनी माता का स्थान हम इन्हें देते हैं।
1: एकदम
0: बिल्कुल। और इन सभी नदियों में माँ गंगा का विशेष महत्व है और गंगा दशहरा आज है। और ये गंगा दशहरा हम हिंदुओं का, हम सभी हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक पर्व है
1: हाँ
0: जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता
1: हाँ
0: है। तो ये मान्यता भी है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और ये पर्व जो है श्रद्धा, आस्था और पवित्र और मानव कल्याण का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और ई दिन राजा भागीरथ अपन पूर्वज के मुक्ति ला कठोर तपस्या करके माँ गंगा के पृथ्वी पे बुलल थीन। यही कारण कि ई दिन गंगा तट पे पूजा अर्चना कर जाए, पूर्वज के मोक्ष और साधक के अखंड पुण्य के ई दिन प्राप्ति होवे है।
0: सही बात है। और गंगा दशहरा का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जो है निमिषा बहन, बहुत ही विशाल है। और दशहरा शब्द का अर्थ क्या होता है?
1: हाँ
0: दशहरा शब्द का अर्थ होता है 10 प्रकार के पापों का
1: हरा
0: नाश। हाँ, और ऐसी मान्यता है निमिषा बहन कि इस दिन अगर गंगा स्नान किया जाए, दान पुण्य किया जाए,
1: हाँ
0: पूजा करने से मनुष्य के जो 10 प्रकार के पाप
1: पाप
0: है
1: है
0: वो समाप्त हो जाता है
1: हाँ
0: और लोग गंगा नदी में स्नान कर भगवान शिव और माँ गंगा की पूजा भी करते हैं ताकि सुख समृद्धि की सभी के लिए वो कामना भी करते
1: हाँ
0: हैं।
1: और देखा माँ गंगा जी की आरती कितना निर्मल लग रहे है। और हमने के गंगा जी के बारे में कहा जाए तो ये भारत के जीवन रेखा भी कहा जाए।
0: एकदम।
1: ये उत्तर भारत के विशाल भूभाग गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। ये करोड़ों लोगों के किसान के खेत ला सिंचाई ला हमने के जल भी उपलब्ध करावे थी।
0: सही बात है। और माँ
1: और
0: गंगा को हम मोक्षदायिनी भी कहते हैं।
1: एकदम
0: भारतीय संस्कृति में निमिषा बहन
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: विश्वास है कि गंगा जल जो है अत्यंत पवित्र होता है और इसके स्पर्श भी आत्मा को शुद्ध करता है।
1: एकदम
0: और अगर हम गंगा के पृथ्वी पर आने की, आपने वो कथा सुनी है कि पुराणों के अनुसार
1: हाँ
0: राजा सागर के 60,000 पुत्र कपि मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे।
1: अच्छा
0: उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके तेज प्रवाह को संभालना बहुत कठिन था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया।
1: वाह
0: इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तप, त्याग, मानव कल्याण करना चाहिए और इसकी प्रेरणा भी ये कथा हमें देती है।
1: वाह। तो दीदी देखिए गंगा जी के बारे में हमने कि दैनिक जीवन में जुड़ा रहती हमने के
0: लेकिन
1: संस्कृति
0: हमारा
1: और
0: क्या
1: हमने
0: कर्तव्य है निमिषा बहन कि आए दिन जो गंगा को इतना हम लोग अपवित्र कर रहे हैं,
1: एकदम
0: अपने घर के जो कूड़ा कचरा को गंगा में
1: नदी में
0: बहा
1: जा
0: रहे,
1: रहे
0: नदी में
1: हैं
0: बहा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि गंगा इतनी पवित्र नदी है, जिस गंगा जल से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिस
1: हमने सब
0: गंगा में
1: शुद्ध
0: हम
1: हो गए।
0: शुद्ध होते हैं,
1: हाँ
0: गंगा स्नान करते हैं, और उसी गंगा जल को हम लोग दूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
1: ये तो बहुत सोचनीय बात कहने दीदी।
0: बिल्कुल
1: आ एकदम हमने क्या आज थाने के है कि ना हमनी सब अगर हम एक आदमी भी आगे बढ़ती तो सब आदमी मिलजुल के आगे बढ़ती,
0: बिल्कुल। तो
1: अपने से
0: गंगा
1: शुरुआत
0: दशहरा,
1: करती और अपन परिवार से कहती
0: गंगा दशहरा के दिन हम लोग हाँ ये प्रण तो ले ही सकते हैं, ये संकल्प तो ले ही सकते हैं कि अपने गंगा को हम स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे।
1: तब दीदी
0: अब क्या
1: इतना नीमन बातचीत, तो देखिए

0: माँ गंगा के बात कर ली, हमने के गंगा जी के भी कितना आरती और गीत होवे है, लेकिन हमने के लोक भजन में कई तरह के गीत है। और
1: एकदम।
0: आज हमने के अंचला कुमारी बहुत निमन लोकगीत सुना रही थी।
1: तो सुनते हैं अंचला कुमारी से ये लोकगीत।

0: हम लोग अंचला कुमारी से लोक भजन सुन रहे थे निमिषा बहन, आगे भी इनसे गीत सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: सुना जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद। नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर

0: ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर, एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं, किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में ये कोर्स जो है न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है।

0: इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या कहाँ कैसे हो सकता है कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002 और 1800121051। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके, जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: हाँ, इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की, और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है, इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का

0: हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का, क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए, और हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves, और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अभी हम ये सब सुन रहे दीदी, प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और ये के संग हमने के चौपाल के समय ओरिया रही है, और हम सब तनिक देर बाद खेती गृहस्थी में बतिए भाई।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: तो निमिषा बहन, हाँ। खेती गृहस्थी में हम लोग खेती संबंधी बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: सुना जाए।
6: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान हौसलों की, उड़ान कुछ नए सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाकर बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम उड़ान। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा

0: नंबर लिख लें तो श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 8 8 6 0 0 8 8 8 2 7। जी हाँ, 8 8 6 0 0 8 8 8 2 7।
1: दोस्तों, आपके लगातार आते फोन कॉल हम सभी के लिए सराहनीय हैं और यही हमें उत्साहित भी करते हैं कि आप इस पड़ाव और पल में हमारे साथ हैं। सच में हमें बेहद अच्छा लगता है आप हमारा कार्यक्रम बड़े चाव से सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें पत्र भी लिखते हैं और आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आगे भी आप इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो। बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम, हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो।
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बार मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।

0: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
0: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
2: और अगर कमाई रुक जाए तो?
0: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
0: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
3: काउंसलिंग के बाद मोहन

0: बदला हुआ दिखता है।
1: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
1: मैं बदलना चाहता हूँ।
2: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन,
1: सीमा मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
2: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
3: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजाजी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है। मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोतो, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं। नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं।

0: वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहाँ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहाँ पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोताओं, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा।
1: हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस कार्यक्रम को सुनकर आपके मन में कोई सवाल, कोई विचार या कोई अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। श्रोताओं, आपके पत्र और आपके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ, इसी दिन इसी समय पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।
2: तो निमिषा महन, हाँ। हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब हमारे किसान भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग खेती संबंधित बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं, कभी किसी फसल के बारे में, कभी मिट्टी के बारे में, कभी उर्वरक, हाँ। के बारे में, कभी जैविक खेती, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है औषधीय पौधे। और हम हाँ। सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है, प्राचीन काल से ही औषधीय पौधों की ये भूमि रही है। हमारे यहाँ आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक जो चिकित्सा है, ये पद्धति अनेक प्रकार के पौधों से और उनके उपयोग से ऐसे ऐसे रोगों का उपचार किया जाता है, हाँ। जो ऐसे अन्य दवाइयों से उपचार संभव नहीं था। तो काफ़ी समय से ही, और हम लोग घरेलू उपचार भी करते हैं, हाँ। कि अचानक अगर हमारा हाथ कट जाता है तो हम लोग तुरंत तुलसी, हाँ। का पत्ता लेके आते हैं और उस जगह,
3: हाँ,
2: पे
3: हाँ, पत्ता, हाँ। मेथी के, हमने गेंदा के पत्ता,
2: गेंदा, हाँ। तो तुलसी जो है, जो वो हमारे घर में ही रहता है, हाँ। इसके अलावा अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, नीम, हाँ। हम लोग तो नीम का पत्ता खाते भी हैं,

0: नीम के पत्ते से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और हम लोग, अगर ऐसा भी कहा जाता है कि नीम के पत्ते को पानी में डालकर नहाने से, उस उबाल के नहाने से बहुत सारे जो
1: कीटाणु वगैरह का
0: हाँ
1: है।
0: चर्म रोग से संबंधित जो बीमारियाँ होती है उससे निजात पाया जा सकता है। उसी तरह ब्राह्मी एक ऐसे पौधे हैं जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं।
1: एकदम सही कहा दीदी। औषधीय पौधा जैसे मतलब कितना निम्न निम्न की अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ये सब को अगर लगावल जाए तो कमे लागत और कमे पानी में ज्यादा मुनाफा कमावल जा सके।
0: बिल्कुल।
1: ये खेती पारंपरिक फसल के मुकाबला ज्यादा मुनाफादार होवे है। और ये खेती के सफलता अगर हम सही से पौधा का चयन करे ही, मट्टी के जांच करे ही, जैविक खाद के प्रयोग करे ही, जैसे कि हमने के बायो टेक जो है उस सब का प्रयोग करे ही, तो हमने के बहुत निश्चित तौर पर लाभ मिले हैं।
0: बिल्कुल। और आज के समय में इन पौधों की जो खेती है किसानों के लिए कह सकते हैं एक लाभदायक व्यवसाय का रूप भी
1: हाँ
0: ले रहा है, क्योंकि आजकल औषधीय पौधे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हो गए हैं, जिससे अनेक तरह की दवाई बनाई जाती है। और इससे क्या होता है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये सब जो औषधीय पौधे हैं उस बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो आधुनिक समय में लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई आपको होता है ना कि कोई नुकसान नहीं पहुंचता
1: एकदम
0: है अगर आप इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि इन पौधों की जो मांग है लगातार बढ़ रही है। और भारत में कई प्रकार की औषधीय पौधों की खेती की जाती है, जिसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने
1: हाँ
0: में और स्वास्थ्यवर्धक जो उत्पाद है उसे बनाने में किया जाता है।
1: हाँ दी आ देखिए औषधीय पौधे के खेती के बात करें तो एक चयन हमने के जलवायु और मौसम के अनुकूल ही करे के चाहिए। जैसे कि अगर रबी में कर रहे हैं तो इस सब गोल कैमोमाइल और चिया जैसा हमने के रखे के चाहिए प्रकार। और
0: हाँ
1: अभी खड़ी फला हमने के तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, अश्वगंधा ये सब जैसा प्रकार के चयन करे के चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और औषधीय खेती जैसे पौधा के रहे तो सभी प्रकार के भूमि में कल जा सके है, लेकिन ध्यान देवे के चाहिए कि ओकरा में जल निकासी के व्यवस्था निमन रहे।
0: एकदम सही बात है। और कहते हैं कि उपयुक्त जलवायु होना बहुत जरूरी है, मिट्टी का चयन भी बहुत जरूरी है,
1: एकदम
0: और जैविक खाद जैसा कि आपने बताया, साथ ही साथ जो प्राकृतिक तरीके का भी उपयोग करना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हाँ
0: और इन पौधों की जो देखभाल में सिंचाई, निराई गुड़ाई और समय पर कटाई, इस
1: एकदम
0: पर विशेष
1: ये तो
0: ध्यान
1: बहुत
0: देना
1: सही
0: है।
1: बात
0: हाँ,
1: कही
0: और कई
1: दी।
0: पौधे ऐसे होते हैं कि कम पानी में और कम लागत में ही अच्छा उत्पादन दे देते हैं,
1: हाँ
0: तो ऐसे में जरूरी है कि उस तरह के पौधों का ही चयन करना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ भी है, औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ती है और ये एक बहुत अच्छा साधन है आय बढ़ाने का। बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक होने के कारण उचित मूल्य भी किसानों को मिल जाता है।
1: हाँ
0: और आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं या फिर दवा उद्योग है, वो अगर किसानों से सीधे इन पौधों को खरीद लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर
1: अवसर
0: भी
1: मिल जाए।
0: बढ़ते हैं।
1: तो हमने के हमेशा देखिए कोई भी अगर ले रहे थे बीज तो ओकरा अच्छा से ध्यान दे के लेवे के चाहिए। जैसे नहीं कि नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके ले सका थी या केंद्रीय औषधीय संगत पौधा संस्थान के रूप में जैसे CIMP से संपर्क कर सका थी
0: बिल्कुल, बहुत
1: या
0: अच्छी बात
1: हाँ
0: आपने कही।
1: या केवी के जो हमने केंद्रीय
0: हाँ
1: विज्ञान
0: हाँ
1: केंद्र है उस समय भी जाके अपने
0: एकदम
1: बीज ले
0: सही
1: सका
0: बात की
1: थी।
0: जो सही जगह है, सही जगह से ही आप सही चीज़ को खरीदे। और एक और महत्वपूर्ण बात है निमिषा बहन,
1: हाँ
0: कि अगर हम लोग औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण में इसका बहुत बड़ा
1: एकदम
0: योगदान होता है, क्योंकि औषधीय पौधों की खेती से पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इससे हरियाली भी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी
1: बढ़
0: रहती
1: जाए
0: है और रासायनिक दवाओं के उपयोग में भी कमी आती है। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से इससे क्या होता है कि पर्यावरण जो है उसका संतुलन बना रहता है।
1: एकदम। आ देखिए औषधीय पौधन में जैसे तो प्राकृतिक रूप से कीट के रोग के प्रकोप कम होवे है, लेकिन फिर भी बचाव ला हमने सब नीम के तेल के छिड़काव कर सके है।
0: एकदम
1: और औषधीय पौधन के जैसे कि कहल जाए कि एक कटाई हमने के सही समय पे करे के चाहिए, कहे के ओकरे में औषधीय गुण जब सबसे ज्यादा रहे तब करे के चाहिए।
0: तो इतनी बढ़िया
1: हाँ
0: जानकारी दी निमिषा बहन हमने अपने श्रोताओं को,
1: एकदम
0: तो क्यों ना एक बढ़िया सा झूमर गीत हम लोग सुनवा दें।
1: सुना
0: तो
1: जाए
0: अंचला कुमारी से सुनते हैं झूमर
1: गीत।
0: लोकगीत।

0: देखा दी, विदेशवा तो गेल पिया, हमनियो सब के जाए पड़े। जाए के समय हो गए हमने के भैया।
1: तो
0: तो
1: अंचला कुमारी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं इस झूमर गीत के लिए। तो चलते हैं।
0: तो प्रणाम सुमा दीदी।
1: नमस्कार निमिषा बहन।

इन कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद

0: हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के।
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, जी आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: वही डोमकच्छ लोक नृत्य परंपरा को मुख्य धारा में लाने वाले पुरोधा विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी इंदु देवी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्मश्री।

0: श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
1: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया गया है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। श्री ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है।
2: सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया जाना एवं सीटेट सीटीईटी में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और मातृभाषा का जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह काम किया है ऐतिहासिक, इसके लिए हम मिथिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई आभार प्रकट करना चाहते हैं।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में मान्यता देने की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह गौरव का विषय है, इससे मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के इस फैसले से मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता को और भाषाई गौरव बढ़ेगा। इधर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के मुद्दे पर विचार किया गया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्य में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सभी को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है, इसका प्रभाव ईंधन की कीमतों पर पड़ा है।
3: जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम कम बढ़ा रही है, बहुत कम कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है और पूरी दुनिया झेल रही है। अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हॉर्मुज संकट सब लोग जान रहे हैं।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।
4: वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खपत को घटाने तथा सार्वजनिक वाहनों को उपयोग बढ़ावा देने के आह्वान के मद्देनजर बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासीय स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु एम्स पटना से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिकल, एक सीएनजी एवं एक पिंक बस, समुना मोड़ से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक बस, धनकी मोड़ से बिहार विधानसभा मंडल निर्वाचन आयोग एवं विकास भवन रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक एवं एक सीएनजी एवं एक पिंक बस का परिचालन आज शुरू किया गया है।
1: बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ की ओर से पटना में एक दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन

0: आयोजन किया गया। इस दौरान तीन कंपनियों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद रहे। श्री यादव ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना जरूरी है।
1: तिरहुत यूनियन के साथ तीन कंपनियां हैं जिसके साथ एमयू हुआ है, जिसमें एचयूयू है, नेचर फास्ट है, हरिलाल है, मंडी मित्र और सेजा फूड है। तो ये सब के साथ हमारा एमयू हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे काफी फायदा होने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को प्रोत्साहित करके, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, कि सरकार हर तरह का सपोर्ट देने की प्रतिबद्धता रखती है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना के टेंट सिटी में आज रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
4: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे की स्थिति बनी रही। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में गर्मी से राहत के आसार अभी नहीं हैं। भीषण गर्मी के कारण मुंगेर जिले के संग्रामपुर में प्लस टू बालिका विद्यालय की 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SS राय ने बताया कि लू लगने के कारण छात्राएं बेहोश हो गईं, अब उनकी हालत में सुधार है। पटना के ज्ञान भवन में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आयोजित इस मेले का उद्घाटन विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। 27 मई तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन

0: 13,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें 1876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के द्वारा चयन किया गया है। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अश्लील नृत्य और हथियार लहराने से जुड़े मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। गौरतलब है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में 2 और 3 मई को एक कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के अश्लील गीतों पर हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय के सहायक नियंत्रण नापतौल कार्यालय में कार्यरत लिपिक पुष्कर कुमार द्विवेदी को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी नापतौल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले में बकरीद पर्व को लेकर अनुमंडल और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन फरार वारंटी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। शेखपुरा जिले में डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस संबंध में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल अररिया किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए। इधर
4: इधर
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभवाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
7: नालंदा जिले में धर्म आस्था और अध्यात्म के अद्भुत संगम के बीच ऐतिहासिक राज

0: किए मालमास मेला का भव्य शुभारंभ हो गया है। 17 मई की सुबह धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद, मंगल आरती और ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत हुई। यह मेला 17 मई से 15 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीता काटकर इस राजकीय मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही संपूर्ण राजगीर तीर्थ क्षेत्र हर हर महादेव, ब्रह्म बाबा की जय, जय श्री राम और राजगीर धाम की जय के जय से गुंजायमान हो उठा। मेले के पहले ही दिन ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और तपोवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे मेला क्षेत्र को आकर्षक रोशनी, धार्मिक झांकियों और रंग बिरंगी सजावट से विशेष रूप से सवारा गया है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवासन, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर की पावन बदियों में शुरू हुआ यह ऐतिहासिक मेला एक माह तक श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का मुख्य केंद्र बना रहेगा। जीविका दीदियों के आर्थिक उत्थान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने राजगीर मलमास मेला क्षेत्र में 25 चिन्हित स्थानों पर जीविका दीदी की रसोई स्थापित की है। इस पहल से बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस रसोई में श्रद्धालुओं को मात्र 35 रुपये प्रति प्लेट की दर से शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जहां रहने, पेयजल, शौचालय, बिजली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं रेलवे ने मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर से हावड़ा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नालंदा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर 19 मई को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा द्वारा परिसर में कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। विश्वामित्रालय सभागार में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने नालंदा को एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सभ्यतागत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान को विवेक और करुणा से जोड़ना है। इस समारोह में वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित 14 देशों के 219 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। जिले में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य अब अंतिम चरण में है। प्रशासन ने 31 मई तक मकानों की सूचीबद्धता का लक्ष्य रखा है। जिले में कुल 5,493 परगणक तैनात हैं, जिनमें से 5,287 ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिले में अपेक्षित 8,08,100 मकानों में से अब तक 8,01,952 मकानों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 38,38,755 आबादी और 6,58,874 परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से जारी प्रचंड लू और गर्मी से आम जीवन व्यस्त हो गया है। जिले का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिजली खपत 300 मेगावाट से बढ़कर 385 मेगावाट तक पहुँच गई है। लगातार बिजली की कटौती से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए 352 बिजली मिस्त्री 3 शिफ्टों में 24 घंटे मरम्मत कार्य में जुटे हैं। विभाग ने कई संवेदनशील जगहों पर बड़े क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास सह सूचना और जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने विगत 23 मई को आपदा पीड़ितों परिवार से मुलाकात की और उनके बीच 4,75,000 रुपए की राहत राशि के चेक वितरित किए। बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने ग्राहकों से प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं को जारी रखने के लिए अपील की है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल सौरभ ने बताया कि जिन खाता धारकों ने वर्ष 2025-26 में इन योजनाओं के तहत पॉलिसी ली थी, वे 31 मई 2026 तक अपने खाते में पर्याप्त राशि जरूर रखें। राशि न होने पर पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी। बैंक द्वारा 18 मई से 31 मई 2026 के बीच प्रीमियम राशि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 436 रुपए और सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20 रुपए ऑटो डेबिट की जाएगी। नई वैधता अवधि 1 जून 26 से 31 मई 2027 तक प्रभावी रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 4।

83.1 मीटर यानी 600 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:52 हुए हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। अब सुनिए नंदिता चक्रवर्ती के गाए गजल। लीजिए सुनिए अहमद फराज का ये कलाम।

0: अहमद फराज का ये कलाम अभी आपने सुना, कलाकार नंदिता चक्रवर्ती। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए यस बॉस फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

यस बॉस फिल्म से भी आपने अभिजीत और अलका याग्निक को सुना, जावेद अख्तर की बोल, जतिन ललित का संगीत, और अब अभिजीत और अलका याग्निक की जुगल स्वर में है फिल्म बादशाह का ये गीत, समीर की बोल, अनु मलिक का संगीत।

अभिजीत और अलका याग्निक को आपने सुना फिल्म बादशाह में। समीर की रचना थी, अनु मलिक का संगीत, और अब अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वर में हम सुनवा रहे हैं फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

0: आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की युगल स्वर में, इब्राहिम मश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत, और अब एक अंतराल सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से भी आपने आशा भोसले और अभिजीत को सुना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं भजन। आज के हमारे कलाकार हैं चंद्रकांत पाठक। सबसे पहले सुनिए मीराबाई की रचना।

रदास की रचना थी, और अब यकरंग की रचना सुनिए, कलाकार चंद्रकांत पाठक।

0: यकरंग की रचना अभी आपने सुनी, कलाकार चंद्रकांत पाठक। सुगम संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को

0: मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथहानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
4: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: सेवरल की अग्रीमेंट्स वर साइंड।
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूप रेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: लाइक मैट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए

0: बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
4: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his

0: has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzad Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी मेहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायरन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरक कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में

0: उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मईशत ने मजाहिमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज़ रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद यह कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर एहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए।

0: उन्होंने अहलकारों से ये भी कहा कि वो पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैनुल अक्वामी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिले एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए, जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगर्म रही है। ये तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिस्सो मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजरा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नज़र वजरा पिछले बरस 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है। इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है, जिसकी ज़्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है, जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनाकिदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे रबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेम्बरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत حکومت کے سپرد کر دیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر

की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलकालांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड

0: आईएमडी ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामैन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाते। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद ना।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों

0: पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट, औसतम 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है।
1: और
0: दूसरा है शतायु।
1: जी
0: शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केवर केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
1: जी अच्छा, जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे, मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे, और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा।
1: जी
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू
1: भी, ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस, के लिए क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं।
1: जी हम सिर्फ जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा।
0: जी
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है।
0: जी
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते, और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी इसमें एक हमारा

0: लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते
1: जी
0: हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं, क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है।
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से, कि आप प्लीज जो क्वेश्चनों का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं। और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी। मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनाच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत। तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं, वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देख के परिचय पत्र दे के ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
1: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान है। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय
1: सूरी
0: सूरी
1: जी,
0: जी और गोपाल
1: पास सोनी जी
0: सोनी जी,
1: जी
0: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद जोग्राफिकल लोकेशन, नाम, पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी,
0: जी इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी।
1: ताकि लोगों को आसानी हो। और
0: जी
1: जो
0: संजीवनी
1: संजय सूरी जी
0: संजय
1: ने,
0: सूरी
1: सूरी
0: जी
1: जी ने, और सासाराम।

0: बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
1: नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक तो दूर बैठे लोगों तक तो भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी
0: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्र तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
2: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
0: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है,
2: जी
0: तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
2: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो
0: जी
2: उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए।
0: चाहिए।
2: तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ हम भी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
0: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
2: जी
0: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जानना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
2: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है आभा कार्ड, उसकी उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग ए वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
0: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे
2: जी
0: वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो
0: हेलो,
3: हेलो,
0: नमस्कार श्रीपद
3: नमस्कार
0: जी, स्वागत है
3: मैडम
0: आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ
0: जी,
3: और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
0: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन होम से?
0: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ,
2: अच्छा,
0: उन्होंने बताया वृद्धाश्रम में।
2: वृद्धाश्रम से रहे, तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर

0: जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए,
1: जी
0: तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम,
1: नमस्कार,
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
2: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिसपे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम, या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे
1: जी
0: मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में, और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे कि इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल
1: मिल
0: जाएगी।
1: जाएगी जी। दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी
3: और दिल्ली से बोल रही हूँ।
1: जी
3: मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम।
1: जी
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है, और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।

0: नमस्कार मैम. जीवन जॉइंट जनरली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है. जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं. इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है.
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है. एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं. हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट. तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने हैं, जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है.
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी.
2: नमस्कार.
1: नमस्कार, आपका सवाल. हाँ जी,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं.
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: और रामाशंकर जी, रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है. आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल
1: अगर उन्हें
0: रहे
1: का
0: हैं.
1: स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी
1: जरूरत
0: जरूरत नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है.
0: नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते
1: जी
0: हैं.
1: हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने. मध्य प्रदेश से जुड़े
0: मंत्रालय ने.
1: जी राजेश नेमा जी. जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ.
1: जी
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा. हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं.
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी, थैंक यू इस सवाल के लिए. हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए. तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए. तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है.

0: है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है, योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस,
1: जी
0: हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे।
1: जी
0: तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सोमवासरी संगीत सभा में आज सुनिए डॉक्टर नीरा चौधरी का ख्याल गायन राग रागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं भजले मन, जबकि द्रुत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं भाव भय भयानी। तबले पर संगति है शांतनु रॉय की और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अनुदीप दे।

0: अभी आपने डॉक्टर नीरा चौधरी का ख्याल गायन सुना। तबले पर संगति थी शांतनु रॉय की और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे अनुदीप दे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। पहले ये संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

कश्मीर की कली, इस फिल्म से ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को आपने सुना। एस एच बिहारी की रचना थी, ओपी नायर का संगीत। और अब आशा भोसले महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म है सीआईटी, एस एच बिहारी की बोल।

0: सावन की घटा, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को आपने सुना है इस फिल्म में। एस एच बिहारी के बोल, ओपन एयर का संगीत, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं। कुछ और गीत हम सुनवाएंगे एक संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आशा भोसले को आपने सुना फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में। अजीत कश्मीर के बोल अपिन अय्यर का संगीत और अब इन्हीं के संगीत में अगला गीत है जिसे हमने लिया है फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। एस एच बिहारी की रचना है, सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

महेंद्र कपूर को आप सुन रहे थे फिल्म ये रात फिर ना आएगी में। एस एच बिहारी की रचना थी, ओपी नायर का संगीत। और अब आशा भोसले को सुनिए, गीत लिया है फिल्म मेरे सनम से। मजरू के रो बोल हैं, संगीत ओपी नायर का।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे।